सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 22, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं और अब सुने कार्यक्रम खेती की बातें।

खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता मित्रों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम के तहत हम बात करने वाले हैं तोरई की खेती के संबंध में। जी हां, हमारे राज्य में तोरई की खेती बेहद लाभदायक है। राज्य की जलवायु और दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। किसान भाई बहन उन्नत बीजों और मचान विधि का प्रयोग करके जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं। यह कम लागत में भारी मुनाफा देने वाली प्रमुख नकदी फसल है। श्रोता मित्रों, झारखंड में जून और जुलाई का महीना बुआई के लिए सबसे अच्छा होता है। फरवरी से मार्च के बीच भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके पाटा अवश्य लगा दे। प्रति एकड़ लगभग 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में आप मिलाएं। श्रोता मित्रों, झारखंड राज्य की जलवायु के लिए पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, आर्या या फाल्गुनी जैसी उन्नत किस्में बहुत अच्छी पैदावार देती है। प्रति एकड़ 600 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई और मचान विधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेड़ों पर बुआई कर सकते हैं। मेड़ से मेड़ की दूरी होनी चाहिए 5 से 6 फीट और बीज से बीज की दूरी होनी चाहिए 2 फीट। श्रोता मित्रों, तुराई एक बेल वाली फसल है। जमीन पर बेल फैलने से फल सड़ने लगते हैं, इसलिए बांस और तारों की मदद से मचान या जाली अवश्य बना ले। इससे फल सीधे लटकते हैं, लंबे होते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम आपको प्राप्त होंगे। गर्मी में हर 4 से 5 दिन में और बारिश में आवश्यकता अनुसार पानी आप देते रहें, यानी सिंचाई करते रहें। निराई गुड़ाई की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो समय समय पर खुरपी से आप घास निकालते रहें। बुआई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद तोरई तोड़ने लायक हो जाते हैं। एक एकड़ में लगभग 50 से 75 क्विंटल तक तोरई का उत्पादन हो सकता है। आप इसे स्थानीय थोक मंडियों या फिर अपने आसपास के बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। श्रोता मित्रों, तोरई की फसल में कीटों और रोगों का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है। मुख्य समस्याएं फल मक्खी और मोजेक वायरस है। इन्हें समय पर मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप और सही दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वप्रथम फल मक्खी की बात करते हैं। मक्खी तुरई के छोटे फलों में डंक मारकर अंडे देती है। इसके बच्चे लार्वा अंदर का गुदा खा लेते हैं। इससे फल सड़ जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप की हमने बात की है। जी हाँ श्रोता मित्रों, इसे अवश्य लगाएं। गंभीर अवस्था में प्रोफेनोफॉस या मेलाथियन का छिड़काव करते रहें। पत्तियों और तनों पर सफेद या भूरे रंग का पाउडर जैसे जमा हो जाता है। पौधे की पत्तियां सूख कर गिर जाती है। रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। मोजैक की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उनका आकार सिकुड़कर छोटा हो जाता है। यह बीमारी सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। सबसे पहले रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। सफेद मक्खी को भगाने के लिए मेटाक्लोप्रीड दवा का छिड़काव अवश्य करें। और अब श्रोता मित्रों, हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे बनते हैं और निचली सतह पर फफूंद दिखाई देती है। इसके लिए मैंगो जेब या मेटालैक्सिल फफूंद नाशक का इस्तेमाल आप अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब सुने चिंतन। हमें बीत चुकी दुखदायी घटना पर बहुत अधिक नहीं टिकना चाहिए। जो लोग अतीत में टिक कर रह जाते हैं, उलझ जाते हैं, उनकी योग्यता सिमट

ऊर्जा भटकती है और व्यक्तित्व भ्रमित हो जाता है। इसलिए समय रहते अतीत से मुक्ति पाएं, वर्तमान पर दृढ़ता से पैर टिकाएं और भविष्य में दूरदर्शिता से झांकें। ये था चिंतन। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

संवेद स्वरों में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भजन। कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरण, सोनू निगम, लखबीर सिंह लखा, विनोद राठौड़, देवाशीष और बाबला मेहता।

आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरण, लखबीर सिंह लखा, देवाशीष और बाबला मेहता। इसी के साथ भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन की श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में

आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने ही वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। हम आपको बता दें श्रोताओं, सुबह 7:10 पर कार्यक्रम जरा सुनिए में आज आप सुनेंगे जीवन संस्था के निदेशक डॉक्टर JR जैन से एक बातचीत, आत्महत्या एक अभिशाप इस विषय पर। 7:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे भोजपुरी लोकगीतों का, कलाकार होंगे सर्वजीत यादव अनुज। 7:35 पर सुरांजलि कार्यक्रम में आनंद लेंगे नजरुल गीति का, कलाकार होंगी तापसी करंजी।

7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेंगे डॉक्टर संतोष गुजूर से राजेश कुमार की बातचीत, किडनी में खराबी प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर। सुबह 8:45 और 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 9:05 पर होगा कार्यक्रम सुरंजना। नौ बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे ख्याल गायन का, राग होगा बिलास खानी तोड़ी, कलाकार होंगे पंडित अजय पोहनकर। दिन के 11:05 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे उस्ताद नजाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान का ख्याल गायन का, राग है पूर्वी और मधुवंती। दिन के 1:20 और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 3:00 सुनना ना भूलें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे टप्पा और दादरा का, कलाकार होंगी सिद्धेश्वरी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी। 8:50 के कार्यक्रम में आज आनंद लेंगे संताली लोकगीतों का, कलाकार होंगे करमचंद सोरेन और साथी।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
3: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपके समक्ष आए हैं एक ज्वलंत लेकिन जागरूकता भरे विषय के साथ। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी आजकल खबरों में सुनते होंगे या फिर अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी युवा या युवती ने या फिर किसी उम्र दराज ने या किसी अधेड़ उम्र की महिला या पुरुष ने आत्महत्या कर ली या फिर करने की कोशिश की। और श्रोताओं, यह खबर बहुत ही दुखद लगती है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी या फिर उनके पास क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विकल्प सभी के पास होता है, बस जरूरी बात यह है कि उसको अमल में कैसे लाया जाए। इसीलिए श्रोताओं, इस विषय के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है और आज के कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार महोदय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देने की कृपा करें।
4: मैं डॉक्टर जे आर जैन डायरेक्टर हूँ, जीवन संस्था। जीवन एक सुसाइड प्रिवेंशन एंड आत्महत्या निवारण केंद्र है जो 2006 से अपने शहर में कार्यरत है
5: जी।
4: और मैंने ये संस्था 2007 में ज्वाइन की थी एंड देन फिर उसके बाद में डायरेक्टर 2010 में बना, अभी तक डायरेक्टर हूँ उसका।
5: बहुत ही अच्छी बात है महोदय। जैसे कि आजकल आप भी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कि हाल के कुछ दिनों में हमारे शहर में आत्महत्याएं की घटनाएं कुछ बढ़ सी गई हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे?
4: इसी दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट्स की सुसाइड और एक जनरल पब्लिक की सुसाइड। स्टूडेंट्स के जो सुसाइड होते हैं वो नॉर्मली उनके एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं, यानी उन पर या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, तब वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे केसेज हैं जो रिलेशनशिप के हैं, वो भी हमारे पास में आते हैं। और जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर में हालांकि ये रिलेशन वाले भी काफ़ी केसेज आते हैं रिलेशनशिप के, और उसके अलावा भी हमारे पास में ये इकोनॉमिक कंडीशंस की, उनके आर्थिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, उससे उनको डिप्रेशन स्ट्रेस होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि मेरी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, तब वो समझते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा पेन है, एक ही सॉल्यूशन है सुसाइड करना। हालांकि ये सब जानते हैं कि सुसाइड एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आदमी को थोड़ा समझना होगा, उसकी अवेयरनेस बढ़नी होगी। एक्चुअली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट कम होते हैं, ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है।
5: जी हाँ, जैसे कि महोदय आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया कि कुछ उम्र के युवा भी होते हैं, कुछ और अधेड़ उम्र के भी लोग होते हैं। तो जैसे कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि पढ़ाई की वजह से या कैरियर के प्रेशर की वजह से कुछ युवा आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं, तो फिर वहीं कुछ 30 से 40 साल के बीच के लोग हैं जो किसी घरेलू झगड़े की वजह से या तो अवसाद की स्थिति में हैं या फिर किसी बात से वो निराश हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं?
4: ऐसा है कि एक्चुअली हमारी यदि अवेयरनेस बढ़ती है तब क्या होता है कि आदमी समझता है कि मेरे पास स्ट्रेस आया, इसको कैसे रिलीव करना है। क्योंकि वो नहीं जानता है, स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अकेला रहना शुरू करता है या सोचता है कि मेरे को कोई समझता नहीं है। लेकिन यदि उसके अंदर में अवेयरनेस रहती कि ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कैसे सबसे कॉन्टेक्ट में रहूँ, कनेक्टेड रहूँ। हम लोग कनेक्टेड बोलते हैं कि सबसे कनेक्टेड रहने से उसकी जो मन की भावना है वो बाहर निकल सकती है। तब वो ये भी सोचता है कि मैं किसके साथ में शेयर कर सकता हूँ। अपनी भावना जैसे ही वो शेयर करता है तो उसका अंदर का प्रेशर कम होता जाता है। और जैसे कम होता है तो उसकी सोच वापस सही ढंग से सही रास्ते पे आ जाती है। अदरवाइज अंदर अंदर में घुटते घुटते सोचने लगता है कि नहीं, मेरे को कोई आदमी समझता नहीं है और मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं, एजुकेशन दें मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस की। तो इस पर हम लोग काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे स्कूलों में बराबर ऐसे प्रोग्राम वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़े। उसके लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनमें कंपटीशन देते हैं, एक थीम दे दिया सुसाइड प्रिवेंशन का, आप ड्राइंग बनाइए, आप डिबेट करिए, और काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, हर साल करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स के अंदर में सुसाइड के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है। और आजकल तो लास्ट ईयर हमने सितंबर में जब ये अरेंजमेंट किया था तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले कि काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे समझ में आया कि अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है सुसाइड रेट डिप्रेशन का रेट कम होता जाता है।
5: जैसे कि महोदय आपने बात है कि डिप्रेशन या फिर अवसाद की, आजकल देखने में ये आता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तनाव और अवसाद या फिर यूँ कह रही है डिप्रेशन आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार तत्व हैं। तो आप अगर काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग किस प्रकार की होती है ताकि लोग तनाव से भी मुक्त हो सकें और डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं, ताकि आत्महत्या जैसी घटनाएं ना कर सकें?
4: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम लोग एक्चुअली उनको कैसे डिप्रेशन से बाहर लाते हैं।
5: जी,
4: तो हमारा जो वॉलंटियर्स हमारे हैं वो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड हैं, कई तरह के डिप्रेशन की जो कारण है उनको कैसे हैंडल करना है, तो बड़ी रिगोरस उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंडर्स वर्ल्ड वाइड, यूके के अंदर में है और मोर देन 40 कंट्रीज के अंदर में सेंटर्स हैं। हमारी इंडिया के अंदर में उसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफेंडर्स इंडिया करके नाम से है और हम उसी के ही अम्ब्रेला में आते हैं। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में टोटल 16 सेंटर्स हैं और सब के सेंटर्स के जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में उनको की दी जाती है और वो ट्रेनिंग करीब 24 घंटे की रिगोरस फर्स्ट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में एक साल तक उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं, रोल प्लेस करवाते हैं, बराबर उनसे डिस्कशन करते रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, ऐसा है तो एक साल में करीब करीब वो काफ़ी अच्छी लेवल पर आ जाते हैं। तब उनको हम

0: लोग टेलीफोन पे बैठाते हैं कि अब आप बीफ्रेंडिंग कर सकते हैं। बीफ्रेंडिंग बोलते हैं हम इसको, काउंसलिंग नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को जो भी हमारे से कांटेक्ट करता है उससे हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी स्थापित करते हैं कि भाई आपकी कोई भी बात है इस सेंटर से बाहर नहीं जाएगी, कोई भी आ जाए आई विल नॉट शेयर कि कौन आया क्या उसने शेयर किया। जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है तब वो हमारे साथ में सब प्रॉब्लम शेयर करता है जो शायद घर में किसी के साथ में वो शेयर नहीं कर सकता है। और जब वो शेयर करता है तब हम उसको और प्रमोट करते हैं कि और ज़्यादा बोलता रहे और सकता रहे। इस दौरान हमको कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं, उस पर हम ड्वेल करके उसको उस पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, तब वो समझता है कि ये हमारा एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी बात को समझता है। और फिर वो सोचना शुरू करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम उसको इसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग थेरेपी भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल चीज है, इसमें हमारी जो रात दिन में लोग बाग कैसे हैंडल करते हैं या समझते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमको वापस अनलर्न करना पड़ता है, मतलब उसको भूलना पड़ता है कि वी शुड नॉट डू दिस वन। हम किसी को एडवाइस भी नहीं करते हैं कि आप आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या खराब है, ये सब जो नॉर्मल लोग करते हैं हम लोग वो नहीं करते हैं। कि हम समझते हैं कि बाहर में बहुत लोग हैं जो इनको एडवाइस करके रहते हैं, दी इज फेड अप ऑफ एडवाइस, तो हम एडवाइस नहीं करके उसी को एम्पावर करते हैं कि वही आगे बढ़े। और उसकी हम प्रॉब्लम बारा का एम्पैथी के साथ में भी, जैसे उसको दर्द होता है उस दवा से वैसे हमको भी दर्द हो रहा है, ये एम्पैथी के साथ में इसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो ये जब ट्रेंड आदमी हो जाता है तो धीरे धीरे वो आदमी डिप्रेशन में हमसे जो कॉन्टेक्ट करता है वो बाहर निकलना शुरू करता है। हमारे पास में टाइम लिमिट नहीं रहता है, वो 2 घंटे तक बात कर सकता है, आराम से सोच सकता है, रो सकता है, रोता है भी तो भी हम उसको नहीं बोलते कि रो मत, उसको अपने आप हम एम्पावर करते रहते हैं।
1: जी
0: ये बहुत ही वेल टेस्टेड और बहुत अच्छी सक्सेस रेट वाली थेरेपी है।
1: हाँ जी, सही बात है महोदय कि एक्टिव लिसनिंग थेरेपी जिसकी बात की आपने कि हम अगर हम किसी की बातों को सुन पाए और उसका उसके दुख को शेयर भी कर सकते हैं। जी महोदय, कि ऐसे कुछ तौर तरीके भी जरूर होंगे जिनको अपनाकर लोग खुद को खुश रख सकते हैं। तो अंत में चलते चलते आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे कुछ तौर तरीके अपनाएं अपने जीवन में ताकि खुद तो खुश रहें या अपने आसपास भी खुशी लोगों में बांट सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा है। खुश रहने के लिए जनता को एक तो ये है कि हम ज्यादा लोगों से दूसरे लोगों से अपेक्षाएं नहीं रखें, यदि तो रखते हैं तो फिर जो भी टेंशन होता है तो उसको परमानेंटली मत रखिए साथ, उसको शेयर करिए लोगों के साथ में, बताइए कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, हमारे से बात करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। जब वो शेयर कर लेता है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होता है और डिप्रेशन क्योरेबल रहता है, ये उसको ध्यान में रखने का है। और सुसाइड का थॉट है दैट इज प्रिवेंटेबल, कोई भी सुसाइड का थॉट आता है तो जरूर हमसे पहले शेयर करेगा, बताएगा, हमसे कॉन्टेक्ट करेगा तो अपने आप बच जाएगा। हम उसको नहीं बोलेंगे कि सुसाइड मत करो, लेकिन हमारे से बात करने से ही उसको समझ में आएगा ये सोल्यूशन राइट सोल्यूशन नहीं है, जरा दूसरे विकल्प है उसके पास, तो वो एम्पावर होकर के दूसरे विकल्पों के साथ में आगे बढ़ेगी। कभी भी हो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, यदि एंग्जाइटी है आप सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन हमेशा आपके साथ में है।
1: महोदय, काइंडली अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी श्रोताओं को जरूर बता दें।
0: हाँ, जरूर, हमारा नंबर है 9297777500। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9294×7500।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे शहर में आत्महत्या जैसी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसी विषय पर शहर में स्थित जीवन संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर JR जैन से हुई बातचीत को। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी अपने आस पास के लोगों को इस संदर्भ में जरूर जागरूक करेंगे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए।

0: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जरा सुनिए, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लें। भोजपुरी लोक गीतों का कलाकार हैं सर्वजीत यादव अनुज।

आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे सर्वजीत यादव अनुज। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुने नजरुल गीती, कलाकार हैं तापसी करंजई।

आप सुन रहे थे नजरुल गीती, कलाकार थी तापसी करंजई। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने डॉक्टर संतोष कुजूर से राजेश कुमार की बातचीत, किडनी में खराबी प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के कल के अंक में डॉक्टर संतोष कुजूर हमें बता रहे थे किडनी के कार्य के बारे में। आज डॉक्टर संतोष कुजूर से हम यह जानेंगे कि अगर किसी का किडनी खराब होता है तो उसका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है। डॉक्टर साहब, किडनी में अगर कोई खराबी आ जाती है तो स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है?
1: ये बहुत अहम जानकारी रखना सर्वसाधारण के लिए जरूरी है कि यदि मुझे या किसी व्यक्ति को किडनी खराब

0: हो रहा है तो उसमें पहला लक्षण ये आएगा कि उन्हें एक कमजोरी महसूस होगी जिसका कारण वो समझ नहीं पाएगा। दूसरा होता है कि उनकी पैर में सूजन आएगी क्योंकि वो पानी को वापस फिल्टर नहीं कर पा रहा है। पुतलियों में पहली सूजन आनी शुरू होगी जो सुबह में सो के उठने के बाद उन्हें नजर आएगा कि इसको हम लोग पफिनेस ऑफ फेस बोलते हैं। और थोड़ी आगे बढ़ने पर उन्हें हीमोग्लोबिन भी कम होगी जिसका कारण समझ में नहीं आएगा। ये मुख्यतः साधारण लक्षण जो है जो प्राइमरी स्टेज में या शुरुआती दौर में नजर आते।
1: अगर ये लक्षण किसी को दिख रहे हैं तो ये हम मान सकते हैं कि उनकी किडनी में कुछ न कुछ समस्या आ रही है।
0: ऐसे तो इन लक्षणों के अन्य और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि हम किडनी के एंगल से सोचें तो इसमें कुछ पैथोलॉजिकल जांच है जिसे हम कहते हैं यूरिया क्रिएटिनिन कहते हैं। ये दो जांच के द्वारा यह पता चल जाता है कि वास्तव में किडनी की स्थिति क्या है।
1: अगर किसी का किडनी प्रभावित होता है तो शरीर में उसके किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और आगे चल के क्या परेशानियां उन्हें हो सकती है।
0: अगर किडनी खराब होने लगता है, जैसे हमने कहा कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी और साथ ही साथ यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा शरीर में ज्यादा होगी, तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो आंखों को भी असर कर सकते हैं, हृदय को भी असर कर सकते हैं, हमारे फेफड़ा को भी असर कर सकते हैं। तो इनके आगे चलकर के कई दुष्प्रभाव और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अभी हम लोग जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किन कारणों से होता है,
1: मुख्य कारण क्या है जिनके कारण किडनी हमारा खराब होता जा रहा है।
0: जी, तो साधारण लोगों के लिए कारण तो बहुत हैं, लेकिन बहुत जो आम तौर पर बढ़ते हुए मरीजों की स्थिति जो हम अस्पताल पर देख रहे हैं और उनके जो बहुत साधारण कारण हम निकाल पा रहे हैं, वो एक कारण आ रहा है जिसमें एक मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा कारण है मधुमेह के रोगी जिनको हम डायबिटिक बोलते हैं, उनमें शुगर की मात्रा का बढ़ना, ये बहुत साधारण कारण है। और तीसरी कारण जो है वो कई दफा हमारे शरीर में अचानक से पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि किसी को डायरिया हो गया बहुत सीवियर और पानी की कमी होगी और वैसी स्थिति में किडनी को अचानक ब्लड कम मिला, पानी कम मिला, तो वह एक तरह से बेहोश हो जाता है और वहां से भी अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो आगे चल करके वो किडनी फेलियर की तरफ अग्रसित होता है।
1: अगर किसी का किडनी सही तौर पे काम नहीं कर रहा हो तो क्या इसके उपाय हो सकते हैं या फिर पूर्व क्या बचाव है, सावधानियां है जिससे कि हम संभल कर रह सकें?
0: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किडनी जो है एक इस तरह का ऑर्गन है जो एक बार खराब हो गया तो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता, और शायद इसलिए भगवान ने दो किडनी दी थी।
1: अच्छा।
0: इसलिए एक किडनी से भी लोग जिंदा रहते हैं।
1: एक अगर खराब हो तो दूसरा काम कर सकता है,
0: कर सकता है, वो भी इतना सक्षम होता है कि हमारे शरीर के सारी चीजों को शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर ये होता है कि यदि किडनी एक बार खराब होनी शुरू हो जाती है तो इसे यदि हम पूरे शुगर प्रेशर इनको और अपने खान पान को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और यदि हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो जल्दी से खराब होगा। इसलिए एक बार यह खराबी शुरू हो जाती है तो इसका समुचित इलाज या कंप्लीट इलाज संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि दो किडनी खराब हो जाती है तो यदि उनका स्वास्थ्य ठीक है तो लास्ट में इनका किडनी ट्रांसप्लांट ही इनका एकमात्र रास्ता बचता है, जिसमें उनके परिवार के कोई व्यक्ति एक किडनी उन्हें डोनेट करता है, वो स्वयं भी एक किडनी से जिंदा रहता है और अपने परिजन को भी एक किडनी से जिंदा रखता है।
1: उनकी जिंदगी चल सकती है आराम से।
0: जिंदगी चल सकती है। जिनको किडनी की बीमारी नहीं हुई है वो साल में एक बार चेक कराकर अपना मूल्यांकन करते रहें कि उनका स्वास्थ्य का ट्रेंड क्या है। और दूसरा है, जिनको यदि इस तरह शुरू हो गई है वो अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ में खान पान में भी एडजस्ट कर लें, दवाइयां भी एडजस्ट होती हैं, इससे हम बहुत लंबे समय तक या कुछ वर्षों तक हम इससे बच सकते हैं और अपनी बीमारी को पोस्टपोन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने किडनी के बारे में काफी अच्छी और उपयोगी जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे होंगे इसका लाभ जरूर उठाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष कुजूर से राजेश कुमार की बातचीत किडनी में खराबी प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
2: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने

0: पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया।

0: है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता।

0: लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says that

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2000

0: तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। देवघर श्रावणी मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को श्रद्धालुओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
1: श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसमें हम एमसी डायरेक्टर को बुलाएंगे। श्रावणी मेला को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हॉस्पिटल कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है और जिस तरह से कुछ नेताओं ने तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाज में हिदायत दे रहा हूँ, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ होगा तो मैं उस पर ताला मारूंगा। श्रावणी मेला का आप समीक्षा करेंगे।
0: गोड्डा शहर के करगिल चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी मुकेश कुमार ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त गोड्डा चाहिए और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे और जब मारे जाएंगे निश्चित रूप से भय मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा।
0: रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत कल शाम 4 बजे तक लगभग 74% इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 24% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 96% फॉर्म का वितरण तथा 34% फॉर्म का डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने और मतदाताओं से शीघ्र फॉर्म जमा करने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज से 19 जुलाई तक इंजीनियरिंग, TRD तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग की ओर से संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव और समय परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आद्रा मंडल के इस रोलिंग ब्लॉक का असर बोकारो, पुरुलिया, आसनसोल, टाटानगर, महुदा और आसपास के रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक भेंट की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में टीम की ऐतिहासिक जीत की स्मृति है। सिमडेगा जिले में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए रेकी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि बांसजोर क्षेत्र में ताजा गांजा तस्करी के मामले में

0: फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
1: एक बस से गांजा बरामद किया गया था जिसमें एक पकड़ा गया था और दो फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है संतोष नायक सोना। ये उड़ीसा के कंधमाल जिला का रहने वाला है। गोवंशीय पशु को पार करने के लिए कार से पुलिस की गतिविधि पता लगाया जा रहा है। उसमें दो आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
0: मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी है। उधर गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य खो खो संघ के तहत राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रजरप्पा के डीएवी ग्राउंड में किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मेजबान रामगढ़ और रांची के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से इस खेल को बढ़ावा मिलेगा।
2: रांची की टीम विजेता रही और मैं उन टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सभी बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जब भी कोई गेम होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। तो मेरी ओर से जितने भी उप विजेता टीम है, विजेता टीम है, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
0: रांची में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन कल विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबलों तथा पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मध्य पूर्व में युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। प्रभात खबर ने लिखा है, 15 अगस्त को 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक बढ़ा नामांकन अनुपात, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की 4 टीमें एक साथ सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं प्रसारण मीता के साथ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आर्टिकल 15 इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरमान मलिक की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील आज़मी ने और संगीत निर्देशन किया था अनुराग सैकिया ने।

ब्रदर्स इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था अजय अतुल ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

खामोशियां इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीतकार थे जीत गांगुली और गीतकार सईद खादिरी। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबा ये देश का सबसे दूसरा लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां

0: मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के जवाब में किए गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमरीका के बीच शुरू हुए सैन्य टकरावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हानयू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। कार्यक्रम सुरंजना के लिए करें जरा सा इंतजार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुरंजना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सुप्रीम नमस्कार। आज के दिन कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ही संगीतकार के गाने और हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार शांतनु मोइत्रा पर। फिलहाल श्रोताओं बातों से पहले सुने उनके ही संगीत निर्देशन में बना ये गाना।

शांतनु का जन्म 22 जनवरी 1968 में लखनऊ में हुआ था। हालांकि इसके बाद उनके परिवार ने जल्द ही दिल्ली का रुख कर लिया था। उन्होंने पश्चिम दिल्ली के पटेल नगर में अपनी शिक्षा शुरू की। वहां के स्कूल स्प्रिंगडेल्स में वे बैंड के लीडर और गायक थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनका दिल हमेशा से संगीत में ही लगा रहा।

शांतनु मोइत्रा ने अपने करियर की शुरुआत एक विज्ञापन एजेंसी में क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पर की थी। हालांकि उनका संगीत के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने जिंगल्स बनाने की शुरुआत की और अपना पहला जिंगल एक चिप्स ब्रांड के लिए बनाया जो जबरदस्त हिट रहा। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल्स बनाने लगे, लेकिन वे यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे।

शांतनु ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा सन 2002 में। फिल्म का नाम था हजारों ख्वाहिशें ऐसी। फिल्म के लगभग सभी गाने हिट रहे। इसके बाद बॉलीवुड में वे आगे बढ़ते चले गए। उनको पहली बड़ी पहचान परिणीता फिल्म से मिली, जिसमें उनके संगीत को बेहद सराहा गया। इस फिल्म से उनके किस्मत के सितारे चमक गए। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, मद्रास कैफे जैसे फिल्मों में उनके गीत संगीत को काफी सराहा गया।

और अब घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है श्रोताओं कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम में आपने सुना फिल्म लगी रहो मुन्ना भाई, पीके, थ्री इडियट्स, परिणीता और मद्रास कैफे फिल्म के गाने। और अब हमें दे अनुमति, नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लें ख्याल गायन का। राग है बिलास खानी तोड़ी, कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर।

आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन। राग था बिलासखानी तोड़ी, और आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये ठुमरी।

आप सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थे पंडित अजय बोहनकर। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां

0: मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक, नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
2: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreshth Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Prime Minister Narendra Modi today said that when all-round development ensures positive transformation in the lives of every citizen, it gives fresh momentum to the nation's progress. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, "The country is continuously working to further strengthen India's capabilities with this inspiring spirit." The quote conveys that ensuring the welfare of women, protecting and nurturing the younger generation and continually making the necessary arrangements for the unity, security, prosperity and orderly governance of the nation are the constant duties of every representative of the people. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today via Vietnam Airlines flight V97979. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said that the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. The embassy said the respective state governments have been requested to coordinate with the affected families for the onward journey of the mortal remains to their final destinations. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalid Al Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the Old England Club, London last night. In the women's doubles final, 10-seeded Chinese-French pair of Guo Hanyu and Kristina Mladenovic defeated the second-seeded Canadian-Brazilian duo of Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani 6-3, 7-5 to clinch the title at the centre court. And that is the end of this news bulletin.
3: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होंगे और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विमान से भारत वापस लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगा और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय समयानुसार रात करीब 9:30 बजे पहुंचेगा। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सेलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। तीसरे चरण में श्री गोयल

0: मशगूल है और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान की इस नई आक्रामकता का जवाब महत्वपूर्ण सैन्य बल से दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर शुरू हुए सैन्य टकरावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिका और ईरान दोनों से वार्ता फिर से शुरू करने और कूटनीति के माध्यम से आपसी मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव को व्यापक रूप से गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल की संसद शुक्रवार को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम सत्र आयोजित करेगी। इसराइली सेना के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार आइजेनकोट की याशर पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से मामूली अंतर से आगे है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
3: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार की ओर से कतर को शोक संदेश देने के लिए वहां जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिकी संसद कांग्रेस में उच्च सदन सीनेट के सदस्य लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। श्री ग्राहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति की वकालत करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं जया भारती।
4: यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल

0: और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हानियो और क्रिस्टीना माल्डिनोविच ने जीता। फाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दूसरे वरीय कनाडा और ब्राजील की जोड़ी गैब्रियला डाब्रोवस्की और लुइसा स्टेफानी को 6-3, 7-5 से हराया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें 20 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

रॉक स्टार इस फिल्म का ये गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संगीत बद किया था इसे ए आर रहमान ने और गीत लिखा था अरशद कामिल ने।

फिल्म का नाम था ब्लू, आवाज थी राशिद अली खान की, गीत लिखा था अब्बास चायरवाला ने और संगीत निर्देशन किया था एआर रहमान ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

केदारनाथ इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। असीस कौर की आवाज़ में संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

हार्टलेस इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन किया था गौरव दागांवकर ने और गीत लिखा था राफत महमूद ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत

0: का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का नेतृत्व करेंगे। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास

अस्नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।

श्रोताओं, एक पंक्तियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं चलता हूँ गिर जाता हूँ, उसके बाद फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, ऐसे में तब तक करता हूँ जब तक मैं चलना सीख नहीं जाता। बिल्कुल दोस्तों, एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तब वो उठता है और गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो चलना शुरू कर देता है। और ये भी सच है दोस्तों कि हमारा जीवन भी इसी तरह है। अगर हम गिरते हैं तो हमें उठना भी आना चाहिए, क्योंकि जब हम उठते हैं तभी तो हम चलना भी सीखते हैं। अगर हम वहीं पर बैठे रहेंगे तो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में प्रयास करते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अपने किए गए प्रयास में थोड़ा सा बदलाव करके हम अगर देखें तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना है।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में गुलजार का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीत बत किया कि तभी आपने सुना, फिल्म का नाम था श्याम बहादुर।

और अब आज के दिन की खास बातें, यानी आज का दिन 13 जुलाई हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी भारत भूमि हमारी कर्म भूमि है और इसकी विविधता अनेकता में एकता के कारण ही इसने हम सबको आकर्षित किया है। वैसे हमारी भारत भूमि में कई ऐसे वीर वीरांगनाएं हुई और कई समाज सुधारक हुए जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं, और उन्हीं के जीवन से हमारा इतिहास भी शोभित है, सजा हुआ है। ऐसी ही एक महान धार्मिक और समाज सुधारक थे जिन्हें आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, राजा राम मोहन राय के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं, जिन्होंने देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए असंभव कार्यों को किया था। साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। साथ ही आज के दिन यानी 13 जुलाई साल 1803 को राजा राम मोहन राय ने अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। साथ ही बता दें श्रोताओं कि ये वही कॉलेज है जिसमें कभी स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस ने भी पढ़ाई की थी।

अभिरुचि चंद की आवाज में। ओडी फिल्म का ये गाना था। शांतनु मोइत्रा ने गीत लिखा और धुन बनाई शाश्वत सचदेव ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। श्रोता, वैसे देखा जाए तो हमारे देश में विदेशी सामानों के बहिष्कार की शुरुआत आजादी के आंदोलन के समय हुई थी। आज ही के दिन साल 1905 में कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने पहली बार सुझाव दिया कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जाए। साल 1905 से लेकर साल 1912 तक स्वदेशी आंदोलन में पहली बार इसने राजनीतिक रूप लिया था। भारतीयों ने तब मैनचेस्टर में बने सूती कपड़ों का बहिष्कार करके अंग्रेजों के आर्थिक मॉडल को चुनौतियां दी थी। आज ही के दिन साल 1940 में हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार सुनीता जैन का जन्म हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में 80 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की। इसके अलावा उन्होंने कई जैन लेखों और कुछ हिंदी साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2004 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साल 1995 में आज ही के दिन उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का निधन हुआ था। आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा की कवयित्री और एक उपन्यासकार थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही लिखना शुरू किया और आजीवन साहित्य रचना से जुड़ी रहीं। विशेष बात की आशापूर्णा देवी की कहानियां स्त्रियों पर किए गए उत्पीड़न को उधेड़ती और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने की अपील करती है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें महिलाओं के अनंत संघर्ष की कहानियां हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

और अब शतः हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो कश्मीर के इतिहास में बलिदान, संघर्ष और आज़ादी की पुकार का प्रतीक बन गया। जी हाँ, आज ही के दिन 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर की केंद्रीय जेल के बाहर जो घटना घटी वो कश्मीरियों के डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत थी। इस दिन 22 कश्मीरियों ने अपनी शहादत दी और इन्हें याद करने के लिए हर साल आज के दिन को कश्मीर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

शहीद फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। राजा मेहंदी अली खान ने गीत लिखा और धुन बनाई गुलाम हैदर ने।

0: एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। और अब इस कार्यक्रम के लिए हम ले रहे हैं छोटा सा अंतराल, अभी हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

वैसे आज के दिन विशेष की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज का दिन एक और रूप से खास है। आज यानी 13 जुलाई को फ्रेंच फ्राई डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे फ्रेंच फ्राइज की दीवानी सिर्फ आज की जनरेशन ही नहीं है, बल्कि ये सदियों से लोगों के पसंद में शुमार है। फ्रेंच फ्राइज एक ऐसा व्यंजन है जिसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं। ये आलू से तैयार किया गया फूड है, जिसमें आलू को लंबी और पतली पट्टियों में काटा जाता है और इन आलुओं को कुरकुरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है और पसंद के अनुसार कुछ मसालों के साथ इसे पकाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आधुनिक फास्ट फूड की शुरुआत वर्ष 1680 में फ्रैंकोफोन बेल्जियम के नामोर में हुई थी, जहाँ स्थानीय लोग विशेष रूप से तली हुई मछली के शौकीन थे और उस समय कड़ाके की ठंड के दौरान म्यूज नदी जो है जम गई और स्थानीय लोग अपने पसंदीदा फूड को बेहद मिस कर रहे थे। तब उन्होंने मछलियों के बजाय आलू को काटा और उन्हें तला और उसका सेवन किया और इस तरह से फ्राइज आलू का जन्म हुआ और लोगों ने इस फूड को फ्रेंच फ्राइज कहना शुरू कर दिया और तब से धीरे धीरे ये फ्रेंच फ्राई लोगों की पसंद बनता जा रहा है।

श्रोताओ, आज के दिन विशेष की हम चर्चा कर रहे हैं तो आज यानी 13 जुलाई को विश्व भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे यानी इंटरनेशनल रॉक डे, अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस। इसका उद्देश्य पृथ्वी के निर्माण और मानव सभ्यता के विकास में चट्टानों के महत्व, भूविज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करना है। श्रोताओं, चट्टान भले ही हमें महत्वपूर्ण ना लगे लेकिन चट्टान मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। इसका उपयोग पूरे युग में किया गया है और ये मानव जाति को आगे बढ़ाने में भी सहायक है। पाषाण युग की अगर हम बात करते हैं तो पाषाण युग में चट्टानों का उपयोग औजार और हथियार बनाने के लिए किया जाता था और तब से चट्टानों और उनमें पाए जाने वाले खनिजों और धातुओं ने हर क्षेत्र में हम मनुष्यों की मदद की है। श्रोताओं, आज का दिन हम मानव जाति के लिए चट्टानों और उनके महत्व के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बता दें श्रोताओं, चट्टानों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, आग्नेय, औसादी और कायांतरित। आज का दिन हमें इन्हीं श्रेणियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही आज के दिन भूवैज्ञानिक संग्रहालयों और प्रदर्शनियों की यात्रा भी की जाती है। कई जगहों पर चट्टानों की पेंटिंग और ट्रैकिंग के जरिए इस दिन का जश्न भी मनाया जाता है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में वासना फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। और अब कार्यक्रम में मनोरंजन जगत की बातें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्मकार की जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू किया था और अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा की। उनका जन्म आज ही के दिन 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। बचपन बहुत कठिन था। मात्र 5 साल की उम्र में माँ का निधन हो गया और पिता संन्यास लेकर चले गए। अनाथ जैसा जीवन जीते हुए वे मुंबई पहुंचे और फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करके अपनी राह बनाई। 1950 के दशक के अंत में वे धीरूभाई देसाई जैसे निर्देशकों के सहायक बने और 1960 के दशक में गाने लिखे और प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम भी किया। साल 1968 में उनकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी आई, जिसमें शशि कपूर और बबीता मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद मेला, समाधि और आन बान जैसी फिल्में भी हिट रही, लेकिन असली मील का पत्थर था साल 1973 में बनी फिल्म जंजीर। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट, अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका और प्रकाश मेहरा का निर्देशन, इस फिल्म ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन की छवि दी और हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया। आज उनकी

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गुलशन बावरा का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जंजीर। और अब हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्हें मुख्य रूप से काले सफ़ेद युग की फिल्मों के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, अभिनेत्री बीना राय के विषय में हम बात कर रहे हैं। उनका नाम मूल नाम था कृष्णा सरीन। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1931 को लाहौर में हुआ था। और बीना राय 1950 के दशक की प्रमुख नायिकाओं में से एक थी। उन्हें लेडी बॉस भी कहा जाता था। उनकी मुख्य फिल्मों में काली घटा, अनारकली, घूंघट, ताजमहल, इंसानियत, मीनार, ये सारी फिल्में थीं और ये काफ़ी हिट भी हुई। और वे प्रदीप कुमार के साथ अपनी जोड़ी के लिए खास तौर पर

जानी जाती थी। मुगले आजम का ऑफर भी उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने उसे बाद में ठुकरा दिया था। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं अनारकली फिल्म का ये गाना।

अनारकली फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा और धुन बनाई सी रामचंद्र ने। और अब श्रोताओं एक जरूरी बात है, नए वोटर जो हैं उनके लिए नियम बदला गया है। मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में नया प्रावधान लागू किया है। अब फॉर्म 6 भरने वाले आवेदकों को अपने माता पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। और यदि माता पिता पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल रहे हैं तो आवेदक को उनके विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक की जानकारी भी देनी होगी। और अब चलते चलते मौसम का हाल आपको बताते चलिए। आज शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इस बीच आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और इसी के साथ ही श्रोताओं, आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी गीता

को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद

है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में वैसे गीत जो मन को गुदगुदाते हैं, जो मन के आकाश पर चांद सितारों की तरह चमकते हैं, और तब कौन आता है हमारे हृदय में और चुपके से ये बात कह जाता है।

जिंदगी के हर पल में गीत संगीत हो, मोहब्बत की मिठास हो, तो जिंदगी फूलों की सेज बन जाती है। हमारे हृदय में प्रेम का रस छलकता है, और जिसकी चाहत में हम उड़ते हैं गगन में पंख लगा के।

प्यार की सीमा निश्चित नहीं होती, कभी ये आकाश से ऊंची तो कभी सागर से गहरी, और उस पर इतनी मिठास कि संसार की सब मिठास फीकी पड़ जाती है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से भावगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। प्यार की मीठी बातों से ही तो दुनिया की राहें आसान हो जाती है। मौसम बदल जाते हैं, नए कोमल, नए फूल, नए पत्ते आते हैं, झड़ते हैं फिर आते हैं, यही तो जीवन की रीत है। लेकिन प्यार का जो मौसम होता है ना, वो कभी नहीं बदलता। सहनाई बजती है, सितार बजते हैं, पांव थिरकते हैं और ये कहते हैं

हम सफर साथ हो तो जीवन का सफर भी आसान हो जाता है, पर हम सफर के बिना जीने का मजा कहाँ। यादें भी खत्म नहीं होती और उस पर एक नया फसाना दिल कहने लगता है, मेरी मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता, हम तो नूर हैं, यूं ही बहते रहेंगे सदियों से और आवाज देते रहेंगे।

आज के भावगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया वे थे मस्ताना, भाभी की चूड़ियां, सती सावित्री, नाच उठे संसार और वारिस। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, आशा भोसले, मन्ना डे और मनमोहन सिंह की। गीत लिखा आनंद बख्शी, भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, वर्मा मलिक और मजरूह सुल्तानपुरी ने। और संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, उत्तम जगदेश और सुधीर फड़के ने। और इसी के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान की आवाज़ों में ख्याल गायन राग है पूर्वी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान का ख्याल गायन राग था पूर्वी। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राग मधुवंती में ख्याल गायन। कलाकार हैं उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान का ख्याल गायन राग था मधुवंती। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन का ठीक 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सही समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that four new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the sixth indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted three indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build seven next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, two new anti-crime laws have become effective from today. Governor R. N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the two stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill. Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. Secretary in the Ministry of Panchayati Raj Vivek Bharadwaj today emphasized the need for collective action to make the country self-reliant in water management. He was addressing the inaugural session of National Level Training of Master Trainers Program on Water Budgeting and Water Security Planning by Gram Panchayats in New Delhi. Mr. Bharadwaj said meaningful change can be achieved when everyone comes together to work towards a common goal. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran State News Agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al Salem and Ahmad Al Jaber Air Bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. The development comes after CENTCOM launched a major wave of offensive precision strikes across multiple locations in Iran yesterday. The Intermeteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का।

0: मुद्दे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
1: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर लो, उनका चेहरा मिलान करो ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखे ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
0: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी, आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
2: पंडा धनुष्य सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है जिसमें सावनी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं जो धनुष्य सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा जिनको आई कार्ड दिया जाएगा उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के करकट्टा जंगल में कल सीआईएसएफ ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 सीआईएसएफ जवानों, सीसीएल प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यहाँ पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर डीएवी विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
4: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करें।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के रुषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:20 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर। तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

जुबेदा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर थे गीतकार और संगीतकार थे A.R. रहमान। और अब कार्यक्रम का अगला गाना पारस मनी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। असद भोपाली ने गीत लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पारस मनी फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। असद भोपाली थे गीतकार और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

FM 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब हम ले रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए छोटा सा अंतराल, अभी हाजिर होते हैं।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

गाइड फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र ने गीत लिखा और तर्ज बनाई एस डी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। साहिर है गीतकार और संगीतकार है रवि। फिल्म का नाम है गुमराह।

चितचूर फिल्म का ये गाना था, यशदास की आवाज़ में गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारे इस सभा में दिन में 3 बजे सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी, सुनिएगा दादरा और टप्पा पर गायन। Then, पर झारखंड के लोकगीतों के कार्यक्रम में आज सुनिएगा संताली लोकगीत, कलाकार होंगे करमचंद्र सोरेन और साथी।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे ऊपर नहीं हुआ, अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
4: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।
7: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम का पहला गाना शोर फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें हैं। संतोष आनंद है गीतकार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अपनापन फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और अब मासूम फिल्म का हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। आरती मुखर्जी की आवाज़ है, गुलजार की, शब्द रचना और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: जंगली फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में जारी है। बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए कोर्सेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ विभाग के सचिव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताज़ा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या 2014-15 की तुलना में 31.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एक मरीज के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट रोड हुंडरू निवासी दीपक कुमार साहू को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रदान की गई है। इस मानवीय सहायता के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज सदर अस्पताल में दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की जांच कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीकृत 60 से अधिक दिव्यांगों की जाँच कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेजे जाएंगे।
1: दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया है कि एक स्वावलंबन पोर्टल है, जिसमें प्रमाण पत्र चाहने वाले अपनी सारी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं, दिव्यांग कैंप में बुलाकर उनका दिव्यांग प्रतिशत जांच करके प्रक्रिया अनुसार उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
0: इस पहल से जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हृदय संबंधी समस्या के बाद आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के पहाड़ी गांव लाखाई टी में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर एवं वरिष्ठ चिकित्सा शोधकर्ता डॉ. देवतोष दत्ता ने गांव पहुंचकर स्थानीय आदिवासी औषधीय परंपराओं और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक शोध से जोड़कर नई चिकित्सा संभावनाओं की तलाश करना है। देवघर एयरपोर्ट ने हवाई संचालन के सफल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 जुलाई 2022 को शुरू हुई इस सेवा से अब तक 10,27,000 से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। निदेशक जय बैनर्जी के अनुसार वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के लिए उड़ानें जारी हैं। आगामी अगस्त से गुवाहाटी के लिए भी नई सेवा शुरू होगी। भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम चीन के चुझोऊ में 15 से 26 जुलाई तक होने वाली 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गई है। यह टीम चीन के लिए रवाना होने से पहले जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। खेल पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: 19 द जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना जुचाओ में ये चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी मैच है और इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा स्टील प्लांट में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था।
0: खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि टीम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
1: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।

0: वो देखो हमारे आगे का शुक्रिया कर रहा है, हमारे घर के सारे सामान बैठ
1: जाएगा।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
1: सारी फसल बह गई।
3: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
2: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
1: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
2: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
3: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
2: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
3: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
3: तो साथियों ऐसा नहीं था कि

0: सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
3: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
3: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान ले ली इस गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: अरे हमारे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
6: क्या
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
7: सारी फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारे
6: सामान
7: जल्दी
6: से ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं। मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
2: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो,
1: ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने
1: वाली बात नहीं है रे।
4: हाँ?
1: वो गौरा कह रही है हाँ? कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ,
1: वो साल के बड़े पेड़ के पास।
2: हाँ वही,
1: न जाने कौन लोग हैं।
2: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
1: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
2: चलो
3: की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: हाय राम,
3: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
1: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
1: वहां में देखो, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
1: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
2: ठीक है।
1: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
2: अच्छा।
1: वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
3: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
1: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
1: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
4: क्या बात है?
1: जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
4: क्या जंगल?
1: जल्दी आओ,
4: अरे सब
1: काटने नहीं
0: देंगे। और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह

0: जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
2: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। अरे हटो हथियार को।
3: अरे अरे हटो
1: हथियार को। नहीं
3: हम पर
1: ये कुछ नहीं कर सकते। चाची
4: सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे मगर तीनों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
3: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
7: ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही नहीं पेड़ को।
8: अरे क्या बात
7: है गौरा, बहुत कमाल कर दिया।
9: जीतती रहे मिट्टी, जीतती
1: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
10: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को
10: कुसुमलता,
11: जगबंधु,
10: चेतना
11: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार, नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: ये था NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.4 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

इस समय दिन के 3:30 और 45 सेकंड हुए हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए विदुषी सिद्धेश्वरी देवी से दादरा और टप्पा पर गायन।

0: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी का दादरा और ठप्पा पर गायन, और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:45 हो रहे हैं। झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: कार्यक्रम आदिवासी लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सांताली लोकगीत से। कलाकार हैं करमचंद सोरेन और साथी।

0: कार्यक्रम आदिवासी लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार करमचंद सोरेन और साथियों की आवाज में संताली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आदिवासी लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर संतोष जताया। गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 बीएलओ की सेवा समाप्त कर दी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दावोस और दिल्ली यात्रा के एमओयू केवल पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बगैर परमाणु बिजली घर समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई। देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में कर्रो, सारठ और पालोजोरी में नवजात शिशुओं के लिए केयर यूनिट तथा बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा और एआई प्रशिक्षण सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने एआईआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चुनाव पाठशाला और बीएलओ की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में आज वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऊपरबेड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमो नेता कालीदीप सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में आगामी कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना और कोल्हान सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 4:02 में है और आप सुनेंगे आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। प्रशुन जोशी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है हम तुम।

जलेबी फिल्म का ये गाना था अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। प्रशांत इंगोले ने गीत लिखा और धुन बनाई जावेद मोहसिन ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गाना अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं। कौसर मुनीर का लिखा यह गाना है, संगीत है जीत गांगुली का और फिल्म का नाम यंगिस्तान।

कलयुग फिल्म का ये गाना था आतिफ असलम की आवाज़ में। सईद कादरी ने गीत लिखा और धुन बनाई मिथुन ने। और अब अगला गाना डेंजरस इश्क से हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की आवाज़ें हैं, गीतकार समीर अंजान और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं लेकर आ रही हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी शाम के 5:02 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिन्होंने आज के इस भारत की नींव रखी थी। और जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएंगे 50% पॉपुलेशन कही जाने वाली महिलाओं को। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी युवा साथी डिजिटल पेमेंट्स पे अपने विचार लेकर। तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल मिस ना करें।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत फिल्म कलंक से, आवाज अरिजीत सिंह की है, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

अरिजीत सिंह और असीस कौर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कपूर एंड सन्स में। बोल थे डॉक्टर देवेंद्र काफिर के, संगीत निर्देशन था तनिष्क बागची का। अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक विलन से, आवाज़ मोहम्मद इरफान की है, गीत और संगीत मिथुन का।

महाराज फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर को, गीतकार कौसर मुनीर, संगीतकार सोहेल सेन। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में 23 जुलाई को होने वाले सेवा दल के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची कांग्रेस भवन में बैठक हुई। मुख्य संगठन नवीन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में झारखंड से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आईटीडीए योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुंदाक नदी पुल निर्माण की धीमी प्रगति पर संवेदक के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हजारीबाग में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल परिसर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत रवाना किया गया जागरूकता सारथी रथ अगले एक महीने तक जिले के गांवों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करेगा। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
2: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसी युवा सोच के साथ आप सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ 102.4 MHz पर। दोस्तों, युवा होना सिर्फ उम्र नहीं है, एक सोच है, एक नया नजरिया है, एक नए जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, आज सुबह जब मैं घर से निकली तो अपनी पॉकेट चेक की, अंदाजा लगाइए क्या मिला? न कोई सिक्का, न कोई नोट, पर फिर भी मुझे चिंता नहीं हुई, क्योंकि आज का भारत कैश से नहीं QR कोड से चलता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी क्रांति की जिसने हमारी पर्स का साइज छोटा और लाइफ को सुपर फास्ट बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल भुगतान क्रांति की। फाइनेंशियल सेक्टर और इकोनॉमी को डिजिटाइज करने की भारत सरकार की स्ट्रेटजी के तहत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के बदले हुए डिजिटल पेमेंट के माहौल के सेंटर में मुख्य चीज है जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल। जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल कनेक्शन सबने मिलकर एक ऐसे डिजिटल इंडिया की नींव रखी है, जहां सरकारी सर्विस की एक बड़ी रेंज सीधे नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के आसानी से मिल जाती है। डिजिटल इंडिया का एक बड़ा मकसद फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस स्टेटस पाना है। पिछले सालों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिजिटल पेमेंट के आसान और सुविधाजनक तरीके जैसे भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, भीम UPI, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS ने काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI, जिसे 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने RBI की देखरेख में लॉन्च किया था, को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बनकर इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया है। एक दशक के समय के बाद UPI में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वर्ष 2016 से 17 में सिर्फ 2 करोड़ ट्रांजैक्शन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 24,000 162 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 12,000 गुना की बढ़ोतरी दिखाता है। साथ ही ट्रांजैक्शन वैल्यू वर्ष 2016-17 में 7,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ हो गई है। बात की जाए युवा पीढ़ी की, तो डिजिटल भुगतान क्रांति ने खर्च और बचत के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के प्रसार ने कैश को जेब से बाहर कर दिया है और उसकी जगह ले ली है डिजिटल वॉलेट्स और UPI ने। डिजिटल भुगतान ने दी है सुविधा और गति। अब ATM में लाइन लगने की भी जरूरत नहीं है। हर छोटी बड़ी दुकानों पर आज QR कोड मिल जाएंगे, बस स्कैन करिए और पे करिए। छोटी राशियों के भुगतान के लिए UPI का यूज बढ़ा है, जिससे छुट्टे पैसों की समस्या खत्म हो गई है। अब वो समय नहीं रहा जब दुकानदार छुट्टे पैसों की जगह टॉफी दे देते थे। भुगतान के साथ साथ युवा निवेश करना भी सीख रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहना है आज की युवा पीढ़ी का।

0: दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारी एक युवा साथी जो कि डिजिटल पेमेंट्स पे हमारे साथ अपने विचार रखने वाली हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वला कुमारी है और मैं बीएससी फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ।
0: मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक युवा नागरिक होने के हिसाब से यूपीआई पेमेंट्स पर आपका क्या विचार है?
1: जी, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई की रेगुलेटरी देखरेख में लॉन्च किया था। भारत में इसका पावरफुल इम्पैक्ट देखने मिला है। पहले समय में लोग प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। जैसे जैसे रूलर्स बदले, वैसे ही भारत में बार्टर सिस्टम का यूज कम होता चला गया। उसके बाद की हिस्ट्री में कॉइन्स की यूज को बताया गया है। उसके बाद 1861 में भारत में पेपर नोट्स का यूज स्टार्ट हुआ, जिससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि भारत में जनरल ट्रेडिंग के लिए हमेशा से ही कैश प्राइमरी सोर्स रहा है। 2016 में जब यूपीआई को इंडिया में लॉन्च किया गया तो ये भारत की हिस्ट्री में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट बन के सामने आया। ट्रेडिशनल कैश के यूज को छोड़कर यूपीआई का यूज करना एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। अगर हम यूपीआई के एडवांटेजेस के बारे में सोचे तो इसने डेली लाइफ में पैसे भेजने को या कैरी करने को सेफ बनाया है। इसकी 24/7 अवेलेबिलिटी ने इमरजेंसी के समय पर भी लोगों को सही समय पर कैश उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही हेफ्टी कैश अमाउंट को कैरी करना भी यूपीआई की वजह से आसान हो गया है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हर छोटी बड़ी खरीद के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स का क्या इम्पैक्ट रहा है?
1: हाँ, इंडिया में डिजिटल पेमेंट के इम्पैक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसके कई फायदे दिखेंगे। जैसे कि यूपीआई ने एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आज के समय में छोटे से छोटे शॉपकीपर के पास यूपीआई मिलेंगे, जिससे कैश नहीं होने पर भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। कैश को प्रिंट कराने और इसे एटीएम को रिफिल करने में जो सरकार का ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी खर्च आता है, वो भी यूपीआई की वजह से काफी हद तक कम हो चुका है।
0: अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स करने से बहुत जल्दी और अननेसेसरी खर्च हो जाता है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यूपीआई पेमेंट में खर्चे ज्यादा होते हैं। एज अ स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूपीआई पेमेंट का ही यूज करते हैं, पर अगर ध्यान दे तो कैश हमारे पास होने से हमें उसे खर्च करने पर एक आइडिया मिल जाता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। पर यूपीआई की क्विक पे टेक्नोलॉजी की वजह से ये चेक कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ। क्विक पे टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा देखा जाता है कि हम ऑनलाइन खर्च कर देते हैं और उसका हिसाब नहीं रहता, जिससे होता है कि अननेसेसरी खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डिजिटल पेमेंट के भरोसे हों और बैंक का सर्वर डाउन हो गया हो, तो उस पैनिक मोमेंट से आप कैसे बची और हमारे श्रोताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगी आप इस स्थिति से निपटने के लिए?
1: बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एज अ स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट या कुछ और चीजों को खरीदने के लिए हम मोस्टली यूपीआई का ही यूज करते हैं। पर कुछ समय पहले की बात है कि मैंने अपने कॉलेज से घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा का यूज किया, पर पेमेंट के समय बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से मेरा यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तब मैंने उस ऑटो वाले को कैश में पैसे दिए। तो मैं सभी को यह कहना चाहूंगी कि बाहर जाते समय एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट कैश अपने साथ कैरी करें, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपके काम आ सके।
0: जी बिल्कुल, जैसा आप सभी ने सुना, थोड़ा कैश अपने साथ जरूर कैरी करें ताकि आप ऐसी स्थिति में पैनिक ना करें। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा हम देख रहे हैं कि तकनीक बढ़ रही है, पर उसका दुरुपयोग करने वाले भी लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए?
1: जैसा कि आरबीआई का कहना है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यूपीआई पेमेंट करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अनजाने व्यक्ति से अपना ओटीपी और बैंक पिन शेयर ना करें।
0: जी बिल्कुल, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी अजनबी के साथ शेयर ना करें। इसी के साथ मैं आपसे आज का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से भारत में डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य कैसा है? क्या ऐसा होगा कि हम पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे?
1: अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से माने तो हो सकता है कि इंडिया में यूपीआई पेमेंट का ट्रेंड और बड़े स्तर पर पहुंच जाए। कैश और कार्ड का यूज भले ही कम हो जाए पर कैशलेस हो पाना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी भी बैंक सर्वर डाउन होने पर लोगों को कैश का ही यूज करना पड़ता है। तो कैशलेस हो पाना डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं।
0: जैसा कि आपने सुना कि कैशलेस हो पाना डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं, भारत में अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स एक रिवॉल्यूशन की तरह उभर कर सामने आया है, लेकिन आज भी कई स्थितियों में हमें कैश की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ मैं अपने युवा साथी को हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।
1: धन्यवाद।
2: जैसा हमने सुना कि डिजिटल भुगतान हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसके काफी फायदे हैं, पर स्कैमर्स भी नए नए तरीके अपना रहे हैं डिजिटल ठगी का। ऐसे में जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें और कुछ बातों का ध्यान रखें। यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने के लिए होता है, कभी भी पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन ना डालें। अगर कोई पिन मांग रहा है तो वह धोखा है। लॉटरी जीतें या कैशबैक पाएं जैसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। पेमेंट ऐप्स में फेस लॉक या फिंगरप्रिंट चालू रखें। दोस्तों, आज हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने की राह पर चल पड़ा है और आज के आधुनिक भारत की नींव रखी है उस महान नेता ने जिन्होंने 2 सीट से बहुमत तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। पहली बार 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए वे प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार वे प्रधानमंत्री बने 1998 में, तब उनका कार्यकाल 13 महीनों का रहा। और आश्चर्य की बात देखिए कि आज की तारीख भी 13 है। तीसरी बार 1999 में वे प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके शासनकाल में हमारे देश को कई उपलब्धियां मिली। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया था। राजनीति में आने से पहले वे एक पत्रकार थे। उन्हें उनकी ओजस्वी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के लिए जाना जाता था। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी 51 कविताएं काफी प्रसिद्ध है। 2 सीट से लेकर बहुमत तक का सफर उनके धैर्य और लगातार मेहनत को दिखाता है। उन्होंने असफलता को स्वीकार नहीं किया बल्कि उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते गए। उनका ये जज्बा आज की हम युवाओं के लिए प्रेरणा है। इस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। उपलब्धियों की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के जरिए हमने ऐतिहासिक जीत पाई थी। देश को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना और गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। ऐसे सबसे ऐतिहासिक कदम था पोखरण परमाणु परीक्षण। आइए सुनते हैं फिल्म परमाणु का ये गीत।

आपने अभी सुना गीत थारे वास्ते, जिसके गीतकार थे वायु, संगीतकार थे सचिन जिगर और आवाज दी थी दिव्या कुमार ने। साल 2015 में अटल जी को भारत रत्न से नवाजा गया। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी शांति में विश्वास रखते थे, पर शांति के पीछे शक्ति भी थी। उन्होंने हमेशा मैत्री का हाथ बढ़ाया, पर जरूरत पड़ने पर भारत की परमाणु शक्ति भी दिखाई। वो कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ये पंक्तियां अटल जी के व्यक्तित्व पर सटीक बैठती हैं। जिस स्वर्णिम भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज उसका नेतृत्व कर रही हैं भारत की महिलाएं। हाल के वर्षों में उद्योग, कॉरपोरेट जगत और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में युवा महिलाओं की रुचि और भागीदारी में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। आज की महिलाएं न सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर आ रही हैं, बल्कि तकनीकी, विनिर्माण और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत और वैश्विक स्तर पर महिला उद्यमियों की संख्या में भारी उछाल आया है। फैशन, ई कॉमर्स, एडटेक और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में कई सफल स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पहली प्राथमिकता है। वे अपने करियर को लेकर अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचने की चाह रखती हैं। उद्यम पोर्टल 2026 के अनुसार 3.39 करोड़ से अधिक महिला नेतृत्व वाले उद्यम पंजीकृत हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत कम से कम एक महिला डायरेक्टर वाले कुल 73,151 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए 149 महिलाओं के स्टार्टअप्स में 3,107 करोड़ से अधिक निवेश किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ने 1,278 महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनियों को 227 करोड़ से अधिक की फंडिंग मंजूर की है। आगे बढ़ने से पहले एक गीत इन सभी उमंगी महिलाओं के नाम।

आपने अभी सुना 2014 की फिल्म मैरी कॉम का गीत, जिसके बोल थे तेरी बारी है। गीत के गीतकार थे प्रशांत इंगोले, संगीतकार शशि सुमन और गायक थे मोहित चौहान।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इन कोशिशों का मकसद मिलकर महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, मेंटरशिप और मार्केट के मौकों को बढ़ाना है और एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना है जिससे वे आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। अब वक्त है समसामयिक खबरों का। यानिक सिनर ने इतिहास रचते हुए दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपने करियर का पांचवा ग्रैंड स्लैम जीता। फीफा 2026 की सेमीफाइनल की तस्वीरें साफ हो गई हैं। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच, दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच। मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ कार्यक्रम युवावाणी से अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे ऐसी ही खूबसूरत शाम को। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ आगे के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।
1: युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवावाणी अभी आप सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने थोड़ी ही देर में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।
2: कार्यक्रम कल कारखाने सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को इंदु का प्यार भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

0: श्रोताओं, बरसात का मौसम आ गया है और बरसात का मौसम भीषण गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ कई तरह के संक्रामक बीमारियां भी ले आता है। इस मौसम में कई बीमारियों का खतरा रहता है, क्योंकि जगह जगह पानी जमा होने के कारण वायरस, बैक्टीरिया और मच्छर तेजी से पनपते हैं। तो आइए श्रोताओं, इसी से संबंधित आपको सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जिसका विषय है बरसात के मौसम की बीमारियां और होम्योपैथी से उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सीएस झा और इनसे बातचीत कर रही हैं स्नेहलता।
1: यूं तो हर मौसम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर हर मौसम में कुछ सावधानियां भी हमें अपनानी पड़ती है, तभी मौसम हमारे लिए खूबसूरत होगा, अन्यथा लापरवाही से हम कई बीमारियों को न्योता दे देते। सावधानी और सतर्कता के अभाव में हम मौसम का मजा नहीं ले पाते, अस्पतालों के चक्कर लगाने लगते हैं। बात मौसम की हो रही है श्रोताओं, तो फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्यों ना बरसात के मौसम से संबंधित सावधानियां परेशानियां हम चिकित्सक से ही जाने। तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीएस झा को, जो शहर के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बरसात के मौसम की बीमारियां और होम्योपैथिक से उपचार। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं?
2: वर्षा काल में होने वाली बीमारियां जो है, खास करके उन लोगों को जो बच्चे नवजात हैं, उनको किसी काल के संरक्षण का शरीर में अभाव रहता है अगर ध्यान न दिया जाए तो
1: जी।
2: अन्यथा जो बुजुर्ग हो गए हैं और जिनकी उम्र बढ़ गई है और उनको शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी ध्यान न रखने पर उन लोगों को ज्यादा होता है। साथ में जो लोग दिन रात काम करते हैं, वर्षा में भीग जाने के चलते, ठंडा लगने के चलते, और शरीर में उस तरह के रोग से बचने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, उसका अभाव हो जाता है।
1: अच्छा।
2: बार बार उस तरह के रोग का होना, लोग परेशान होते हैं।
1: अच्छा, जो ये बीमारियां होती हैं बरसात के मौसम में, उनका क्या कारण है, क्यों होती हैं ये बीमारियां?
2: वर्षा के कारण, जो वर्षा में अनियमित रूप से भीग जाते हैं या वैसे जगह पर रहते हैं जहाँ हर समय पानी रहता है और उसके जलवायु के प्रभाव क्षेत्र में वो आते हैं, जिनको ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, और वैसी परिस्थिति में उनका सांस लेना, चलना फिरना, बोलना, खान पान सब जो है उनके लिए दूषित हो जाता है,
1: प्रभावित हो जाता है बारिश के मौसम में दूषित,
2: और उस जिसके चलते उनके सब तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं
1: जी।
2: जैसे सर्दी खांसी का होना, तो ऐसे गर्मी के दिन में अमूमन लोग गर्मी से प्रभावित रहते हैं, तो ठंडा में बैठने का, कूलर में फ्रिज का पानी पीना या एयर कंडीशन में रहना, ऐसे जगह पर या ठंडे पेड़ के नीचे बैठना, पंखा का वो इस्तेमाल करना करते हैं। वर्षा जब शुरू हो जाती है तो वर्षा में हवा जो है, वर्षा का हवा, ठंडा हवा और उस जलवायु में जो वातावरण में ठंडक आ गया
1: जी,
2: जिसके चलते अब उनको बाहर की गर्मी से बचना है, ताकि ये मौसमी ठंडक उनको प्रभावित करता है। और पहले से अगर आदत है कि एसी का यूज करें, कूलर का यूज करें, तो दोनों का संयम मिलके उनको उस पर बाध्य करता है बीमार होने के लिए,
1: परेशान कर
2: हो जाती है, खांसी हो जाती है, श्वास का तकलीफ हो जाता है, छींक आती है, माथा भारी हो जाता है और बदन दर्द होता है, बुखार होता है, तरह तरह की तकलीफ होती है। तो वैसे समय में लोगों को बचना चाहिए कि हम उस वातावरण से अपने को कैसे संरक्षित रख सकें।
1: अच्छा, दोनों में कैसे तालमेल बिठा पाए, मौसम में परिवर्तन होता है जिससे लोग परेशान होते हैं, तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानेंगे कि क्या इस मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियां भी होती हैं क्या?
2: खास तरह की बीमारियों में है जैसे मान लीजिए पेट का खराबी हो जाना, उल्टी होना, पतला पैखाना होना, आँव का होना, सांस फूलने का तकलीफ होना, और कुछ चर्म रोग है जो केवल बरसात में ही होता है।
1: अच्छा,
2: जो वर्षा के कारण या वर्षा के पानी के कारण जो नमी बदन में चमड़े में लगी रहती है, कपड़े से हम उसे ढकते हैं और पसीना आता है, और उसके होने के बाद उस बीमारी का बढ़ना होता है। अच्छा। तो केवल बरसात में ही होता है।
1: अच्छा अच्छा है? तो क्या उपाय है, कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों से?
2: तो बचने के लिए दवा का सेवन करना है, और दूसरा क्या है कि शरीर के उस भाग को जिसको ढका हुआ रहता है, जिसमें पसीना आता है, उस सब जगह पर नहाने के समय साबुन तो लोग लगा लेते हैं लेकिन तेल नहीं लगाते हैं, तो उस जगह पर तेल लगाना चाहिए। इससे तेल के चलते क्या होगा कि सूखापन नहीं रहेगा और नमी रहेगी, जिसके चलते उनका उसमें बीमारी का बढ़ना, चर्म रोग
1: नहीं होगा, और रूखापन वहाँ पर नहीं रहने देना है
2: जी।
1: उसको मॉइस्चराइज करके रखना है।
2: और कभी भी साबुन लगाइए वैसे जगहों पर, तो नारियल का तेल जरूर लगाइए, इसलिए उस तेल से आपको क्या होगा कि चमड़े में सूखापन नहीं आएगा, और पसीना लगने के चलते जो खुजली हो जाएगी उससे आप बच पाएंगे।
1: अच्छा।
2: और दवाई है, जो दवाई खाया जाए तो उससे बचा जा सकता है।
1: हाँ।
2: और हो गया हो तो
1: हाँ।
2: और दूसरा है कि उसका प्रिवेंटिव, जैसे उससे बचने के भी उपाय है
1: जी जी,
2: कि अगर हम उस दवा का सेवन करें तो ये होगा नहीं।
1: अच्छा।
2: लेकिन साथ साथ संयमित भी रहना पड़ेगा।
1: हाँ।
2: खान पान में संयम करना है कि वैसा खाना जो बरसात में बाहर से आया हो
1: जी,
2: तो उस पर ध्यान रखिए कि उसमें हवा न लगे बरसात का, अन्यथा वो भी प्रभावित होगा जो हमारे पेट को खराब कर देगा, खान पान के सिस्टम को खराब कर देगा, और तो हमारे साथ में पतला दस्त होना, उल्टी होना, अनपच होना, डकार आना, अजीब तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है।
1: और यदि दस्त हो रहे हैं तो उस समय में, या बुखार हो रहा है, तो किस तरह के खास उपाय, जैसे साफ सफाई है, ऐसे इस तरह से कैसे लोगों को रखना चाहिए?
2: संयम करिए कि जिस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं जिससे उस तरह की बीमारी बढ़ती है, जैसे सब्जी है
1: जी,
2: तो बाजार से सब्जी ले आके उसको अच्छे से गर्म पानी से धो के और तब बनाए।
1: अच्छा,
2: क्योंकि
1: अच्छा।
2: बाहर का जो कीट है वो सब हम लोगों के घर में खान पान से बचे।
1: अच्छा।
2: दूसरा,
1: जब साग सब्जी लेके घर आते हैं तो पहले उसको अच्छे से सफाई करिए, गर्म पानी में सफाई करिए, धोइए,
2: तब बनाइए,
1: तब उसका प्रयोग करिए
2: जी। दूसरी बात है, जो खान पान के लिए सामान लाते हैं
1: जी जी,
2: उसको भी बाहर ऐसे खुला मत छोड़िए, उसको पैक्ड करके रखिए, और अगर बीमारी हो जाती है तो तुरंत कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका सेवन अगर हम लोग करें तो उससे बचा जा सकता है, या अगर उसको खाया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, जो खास करके महीना दो महीना चार महीना का है
1: जी जी,
2: माँ का दूध पीता है, अगर माँ अगर संरक्षित नहीं रहेगी तो बच्चे को उसका प्रभाव,
1: बच्चा भी प्रभावित होगा बिल्कुल।
2: और अगर बच्चा प्रभावित होगा तो सर्दी खांसी बुखार होगा, फिर उसको देख रेख के चलते
1: जी
2: माँ भी प्रभावित होगी
1: बिल्कुल।
2: और इसलिए दोनों के खान पान पर और रक्षा पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
1: साफ सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, बरसात में जो बीमारियाँ होती हैं आमतौर पे, होम्योपैथी कैसे उपचार करता है उन बीमारियों का?
2: होम्योपैथिक में है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का पेट खराब हो गया हो और उल्टी हो रहा हो या पत्ता दस्त हो रहा है, तो उसमें दो तीन ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको यूज किया जाए। एक है, अगर पेट में मरोड़ के साथ में पतला दस्त होता हो तो एलोज सोकोटरीना करके एक दवा आती है, और दूसरी दवाई है वेरेट्रम एल्बम
1: जी,
2: आर्सेनिक एल्बम, ये सब दवाइयां हैं जिसका अगर लक्षण सह उपाय होम्योपैथिक में, देखिए लक्षण जिस तरह का है, जैसे मान लीजिए सर्दी खांसी है तो किसी को सांस लेने में दिक्कत है और किसी को सांस छोड़ने में दिक्कत है
1: जी,
2: तो होम्योपैथिक में दोनों का दो दवाई है,
1: दोनों का दो दवाई जी।
2: और होम्योपैथिक में है कि पूरी तकलीफ जो है, पूरा जो बीमारी का है विधा जो है, वो लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है, जो सिम्टम जिसको बोलते हैं, अगर सिम्टम जैसे मान लीजिए कोई आदमी आगे की ओर झुकता है तो कमर दर्द आराम रहता है, और किसी को अगर पीछे की ओर झुकता है तो कमर दर्द आराम होता है, तो दोनों की दो दवाई है, दोनों कमर दर्द का ही है, लेकिन एक आगे झुकने से आराम होता है तो उसमें रस्टक्स और ब्रायोनिया दिया जाता है, पीछे की ओर झुकने से अगर आराम होता है तो डायस्कोरिया दिया जाता है, है? कान में आप अमूमन देखिएगा, कान से लोग सुनते कम है, जो लोग
1: जी।
2: कान का पर्दा खराब हो गया, अब एलोपैथिक में उसका ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं और उससे भी वो ठीक नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी उसकी ऐसी दवाई है कि हम कितने लोगों को ठीक किया है जिनका पर्दा कान का खत्म हो गया है, लेकिन उस दवा के अच्छे से प्रयोग से उनका कान का पर्दा बन गया, सुनने की बीमारी खत्म हो गई। तो होम्योपैथिक जो है लक्षण के ऊपर में सिम्टोमेटोलॉजी है ना, उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए
1: उपचार करता
2: एक आदमी को ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
2: और एक को ठंडा पानी से तकलीफ बढ़ता है और गर्म पानी से अच्छा लगता है
1: जी,
2: तो दोनों का दो सिम्टम हुआ तो दोनों के लिए होम्योपैथी में दूसरा दवाई है, दो दवाई है।
1: अच्छा,
2: तो लक्षण के विधा पर होम्योपैथी का चिकित्सा चलता है सिम्टोमेटोलॉजी के आधार
1: जी, लक्षण के हिसाब से होम्योपैथी में इलाज होता है। और ज्यादा सही है कि आप दवाओं का सेवन चाहे आप होम्योपैथी का करें या एलोपैथी का करें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खान पान की बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बाहर का खाना लोगों को आज के समय में ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ये बारिश के समय में क्या परहेज करना चाहिए, उन खानों को खाना चाहिए या नहीं खाना
2: चाहिए? बचना चाहिए जो खुले में बैठ कर बिकाता है जिसमें मक्खी आके मच्छर आके बैठता है
1: जी,
2: वो सब खाने से बचना चाहिए, चाहे बाहर का हवा का उस पर प्रभाव पड़ता है वो सब खानों से बचना चाहिए।
1: मतलब जो खुले में खाने जो हमको नहीं लेना चाहिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, साफ सफाई।
2: फल भी अगर आप खाते हैं तो उस फल को पहले क्या करिए कि अच्छे से पानी से और हो सके तो हल्का उष्ण पानी से धो लीजिए और तब उसका काट के सेवन करिए, क्योंकि उस पर और ज्यादा संक्रमण होता है उन जीवाणुओं का जो वर्षा काल में पैदा होते हैं और फल के माध्यम से हमारे घर में आ जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बारिश के समय में कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं और ये बहुत सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, अंत में हमारे श्रोता कैसे बारिश का मजा ले, परेशान ना हो इस मौसम में, क्या करे वो इस मौसम में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: वर्षा का आनंद लेने के लिए
1: जी
2: पहले तो अगर साफ सुथरा अपने घर के छत पर वर्षा में अगर स्नान करते हैं या वर्षा में भींगते हैं तो सबसे पहले वो करने के बाद
1: जी
2: आप अपने घर में आइए और अच्छे पानी से धो के स्नान करके बदन को सुखा के और फिर उसके बाद में अच्छा से कपड़ा का यूज कीजिए और वर्षा के पानी से भींगे हुए मत रहिए।
1: अच्छा, बहुत ज्यादा देर तक बारिश में भींगे हुए कपड़ों में नहीं रहना है। तो डॉक्टर सीएस झा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां और होम्योपैथी से कैसे उसका उपचार हो सकता है इस विषय में बहुत अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: बरसात के मौसम की बीमारियां और होम्योपैथी से उपचार, इस विषय पर श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर सी एस झा और इनसे बातचीत कर रही थी स्नेहलता।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। श्रोताओं, अभी आपने सुना शोर फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत लक्ष्मीकांत।

श्रोताओ, 21वीं सदी को यदि डिजिटल युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी का हर हिस्सा तकनीक से जुड़ चुका है। जी हां श्रोताओ, ऐसे में डिजिटल स्किल्स या डिजिटल कौशल अब केवल एक अतिरिक्त योग्यता नहीं बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। यदि समय के साथ खुद को नहीं बदले तो इन कौशलों को नहीं सीखते हैं तो विकास की इस तेज दौड़ में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। जी हां श्रोताओं, सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और विभिन्न सॉफ्टवेयर या एप्स का सही और समझदारी से उपयोग करने की क्षमता ही डिजिटल स्किल्स है। आइए अब जानते हैं डिजिटल स्किल्स का महत्व। जी हां, पहला है जैसे रोजगार के नए अवसर। जी हां श्रोताओं, आज लगभग हर नौकरी के लिए डिजिटल

चौथा है समय और पैसे की बचत। जी हाँ श्रोताओं, बैंकिंग बिलों का भुगतान, टिकट बुकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ अब ऑनलाइन लिया जा सकता है, जिससे ऑनलाइन अब लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रोताओं, डिजिटल स्किल्स आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। यह युवाओं के आत्मनिर्भर बनने का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि हम आने वाले समय में खुद को प्रासंगिक रखना चाहते हैं, तो हमें लगातार नई तकनीकों को सीखना होगा। सरकार, स्कूलों और परिवारों को मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि देश की युवा पीढ़ी को समय रहते बेहतर डिजिटल कौशल प्रदान किया जा सके, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता डिजिटल भारत से होकर ही गुजरता है।

सफर फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे यानी इंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में

0: झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार निरोध वरण मन्ना और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

0: प्रीणाः वंशपरम्परा सम्बद्धाः अभिलेखाः मतदातृसूचयः भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेशप्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासाय च सूचनापत्राणि प्रख्यापितानि। एतासां याचिकानां श्रवणं भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकान्तजॉयमाल्याबागची वी मोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक् जूनमासस्य त्रयोदशे दिनांके उत्तरप्रदेशप्रशासनेन श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य अनुरोधेन मन्दिरस्य दानविषये अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यात्मिकं विशेषान्वेषणदलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंड राज्यस्य रामगढ़ जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः संजीव कुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तत्क्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्ड राज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनं आर्थिक साहाय्यं क्षतिपूर्तिं पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोलम्बिया देशस्य नगरे आयोजिते 65वें 26,000-तमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिक शास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्ण पदक विजयाय भारतीय दलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलीपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवायोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्य पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरं, मातामुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 20,400-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयानपर्यटनसेवा जुलाई मासस्य 18 दिनांकादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा 78,100 दशांशोत्तर सप्त कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां विंशति औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्ररूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोकियो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति वार्ताः।
2: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता मित्रों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। चर्चा का विषय है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली बकरियों की किस्में एवं इससे आर्थिक लाभ की विधि के संबंध में। जी हाँ श्रोता मित्रों, झारखंड में मुख्य रूप से ब्लैक बंगाल बकरी पाली जाती है। यह छोटे आकार की होती है, लेकिन इसके मांस, खाल और तेजी से बच्चे देने की क्षमता के कारण किसान भाई बहनों को बहुत मुनाफा होता है। यह झारखंड की सबसे लोकप्रिय और मुख्य नस्ल है। इसका रंग मुख्य रूप से काला होता है। यह एक साल में 2 बार बच्चे देती है और 1 बार में 2 से 4 तक बच्चे पैदा करती है। संकर और क्रॉस ब्रीड की बात करें श्रोता मित्रों, या अधिक दूध और मांस के लिए यहाँ की स्थानीय बकरियों को सिरोही, बोटल या जमुनापारी नस्लों के साथ मिलाकर पाला जाता है। इससे बकरियों का वजन तेजी से बढ़ता है। बहनों, पलामू बकरी झारखंड के पलामू क्षेत्र में पाई जाने वाली एक स्थानीय देशी नस्ल है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। बकरी पालन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की विधि के संबंध में अगर हम बात करें तो बकरियों को बारिश, ठंड और धूप से बचाना बेहद जरूरी है। उनके लिए हवादार और सूखे बाड़े का निर्माण आप अवश्य करवा लें। बाहर चराने के साथ साथ उन्हें घर पर हरा चारा और सूखा चारा दें। दूध और मांस की अच्छी बढ़ोतरी के लिए चारे में मिनरल मिक्सचर और थोड़ा दाना अवश्य मिलाएं। ग्रामीण भाई बहनों, हर 6 महीने में बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा दें। किसी भी बीमारी से बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर PPR और ET के टीके अवश्य लगवा लें। अच्छे और वजनदार नर का चयन करें। संकर नस्ल के नर का प्रयोग करने से पैदा होने वाले बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक मुनाफा देते हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 100 बकरियों और 5 बकरों के व्यवसायिक फार्म पर 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बकरियों को स्थानीय हाट के अलावा कुछ त्योहारों पर बेचकर आप ज्यादा लाभ भी कमा सकते हैं।

श्रोता मित्रों, पशुओं के अपशिष्ट से भी आप आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ, पशुओं के अपशिष्ट से भारी आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। अपशिष्ट को बायोगैस में बदलकर मुफ्त रसोई गैस और बिजली प्राप्त कर सकते हैं आप। बचे हुए कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट बनती है। इसे बेचकर किसान भाइयों आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं और खेती की लागत बचा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनाती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है। किसान भाई इसे पैक करके बाजार में बेच सकते हैं या रासायनिक खाद का एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प है। गोबर गैस संयंत्र लगाकर गोबर से गैस बनती है। इससे खाना पकाने के लिए मुफ्त ईंधन मिलता है। बची हुई बिजली से फार्म की मशीनें चलाई जा सकती हैं। इससे बिजली और गैस का खर्च शून्य हो जाता है। ग्रामीण श्रोता मित्रों, जैविक कीटनाशक और मूत्र के उत्पाद की बात करें तो गाय का मूत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसे नीम और अन्य पत्तियों के साथ मिलाकर जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं।

आपको बता दें, बाजार में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के बीच इसकी बहुत मांग है। बात अब बायोगैस स्लरी की करें तो बायोगैस बनाने के बाद जो तरल पदार्थ बचता है वह बहुत ही पौष्टिक होता है, या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से भरपूर होता है, या पौधों के लिए टॉनिक का कार्य करता है। इसे तरल उर्वरक के रूप में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं आप। श्रोता मित्रों, एक किसान भाई जिनके पास 5 से 6 मवेशी हैं, वे प्रतिदिन के गोबर से लगभग 2 घन मीटर बायोगैस बना सकते हैं। इससे परिवार का खाना पक जाता है, साथ ही साल भर में हजारों रुपए की खाद बचती है, जिसे बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त किया जा सकता है।

0: और अब श्रोता मित्रों रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। विषय है बरसात के मौसम में पशुओं का प्रबंधन। जी हां, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन कुमार।
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है बरसात के मौसम से संबंधित। जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के समक्ष कई सारी चुनौतियां आ जाती है। ऐसे में पशुओं का ध्यान हम किस प्रकार रखेंगे, दुधारू पशुओं के खान पान में हम क्या कुछ शामिल करेंगे, दुधारू पशुओं का आवास किस प्रकार रहेगा, क्या कुछ बीमारियां जो है उनको अपनी चपेट में लेती है, तो ऐसे में हमें क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, इन सब से संबंधित हम ढेर सारी जानकारियों को साझा करने वाले हैं। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं जिले के भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर कुंदन कुमार जी, जिनसे हम ढेर सारी जानकारियों को साझा करने वाले हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार जोहार।
1: सर, सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि वर्तमान मौसम में जो हमारे दुधारू पशु हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं बरसात के मौसम में। सर,
2: बरसात में बीमारियों का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, इसीलिए बरसात आने से पहले ही हमें टीकाकरण करा लेना चाहिए। टीकाकरण नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े स्तर पर फैल जाती है। विगत 2-3 वर्षों से अभी लंपी स्किन डिजीज, चेचक जैसा गायों में रोग पाया जा रहा है।
1: मवेशी जो किस तरह से प्रभावित होते हैं इस लंपी रोग से। सर,
2: लंपी रोग जो होता है बारिश में, क्योंकि परजीवी जो मच्छर कीड़े ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनके द्वारा ही फैलाया जाता है। गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है, या एक विषाणु रोग है तो वो इस सीजन में बहुत ज्यादा होता है। इसमें रोगों में क्या होता है कि जैसे मनुष्य में चेचक जैसा लक्षण पाया जाता है ना, दाना दाना शरीर में हो जाता है, बुखार आ जाता है, उसी तरह इस लंपी स्किन डिजीज में लंप बन जाते हैं, छोटे छोटे चेचक जैसे बन जाते हैं। तो इसका कोई इलाज उस तरह का नहीं है, इसलिए हम उसका टीकाकरण कराते हैं। इसमें बस हमें पशु की प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करना है
1: जी आपको। अच्छा सर, जो ये बीमारी है इससे क्या दूध देना भी प्रभावित होता है मवेशियों द्वारा।
2: हाँ, ये दो बीमारी जो भी मैंने कहा आपको, FMD और LSD, ये दो बीमारी ऐसे जो पशु को डायरेक्टली मारते नहीं है, मतलब जिंदगी का रिस्क नहीं रहता है, लेकिन वो अंदर से खोखला कर देता है, उनके दूध को बहुत प्रभावित करता है
1: जी। मतलब दुधारू पशु कहीं ना कहीं इन बीमारियों से काफी प्रभावित होते हैं, ऐसे में टीकाकरण जो है वो काफी जरूरी है और बरसात के पूर्व ही, इस मौसम के आने से पूर्व ही हमें मवेशियों में इसके टीकाकरण को अवश्य ध्यान देकर लगवा लेना चाहिए। सर, बरसात के मौसम में हम अपने दुधारू पशुओं के खान पान में क्या कुछ शामिल करेंगे या खान पान उनका किस प्रकार का होना चाहिए।
2: दुधारू पशुओं में भी क्या है कि बरसात के मौसम में नए नए घास ये सब निकलते हैं जिसमें बारिश की बूंदें या बारिश का जल जमा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे उसमें पेट के कीड़े इन सबको खतरा बहुत होता है। तो जो भी उनको चारा दे उन्हें अच्छे से साफ करके दे, या वो जब भी दे तो कृमि का दवाई जो होता है वो उन्हें इस मौसम के पहले बहुत जरूरी है कि समय पे खिला देना चाहिए, ताकि जो नए पत्ते, कोमल पत्ते और ये जो जल जमाव का कीड़े मकोड़े चारा में आते हैं उनसे वो बच सके
1: जी। अच्छा सर, अगर हम अपने दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं, ऐसे में प्रोटीन से संबंधित या फिर उन्हें एक्स्ट्रा क्या कुछ खान पान में शामिल करना चाहिए जो कि मतलब दूध उत्पादन में, दूध क्षमता में जो है वो बैलेंस बना रहे, वो स्थिति जो सामान्य बनी रहे।
2: दूध उत्पादन के लिए जैसे कोई भी सीजन हो वो हर एक सीजन में खाना खिलाना चाहिए, प्रोटीन हो या खली की आवश्यकता, कंसेंट्रेट जिसे कहते हैं हम। लेकिन वो जैसे गाय अगर दूध देने की अवस्था में या प्रेग्नेंट है, जैसी उसकी अवस्था है उसके हिसाब से खान पान का देखभाल करना है। बारिश में बस वही रखना है कि कृमि का दवाई पहले देते, खाना जो रहे वो साफ सुथरा रहे, उसमें अभी फफूंदी जैसे

0: फंगस हम कहते हैं वो सब लगाना हो। बारिश
1: जी
0: में ये दो तीन बातों का ध्यान रखना है, बाकी जो उसकी स्थिति है कि प्रेग्नेंट है या दूध देने में स्थिति में है या अभी सूखी है, उसके हिसाब से फिर दाने या चारे को मेंटेन करना है।
1: जी सर। सर अगर हम आवास की तरफ रुख करते हैं, अगर हम आवास की बात करते हैं, तो बरसात के पूर्व हमें क्या कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए? लेकिन चूंकि अब बरसात का मौसम आ चुका है, ऐसे में सर हमारे जो ग्रामीण श्रोता मित्र इस समय आपको सुन रहे हैं, आवास में क्या कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है सर?
0: जैसे बारिश में खतरा यही रहता है कि जल जमाव हो जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जल जमाव ना हो पाए। दूसरी बात है, जैसे हमने कहा कि फफूंदी फंगस, इनका इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर या अन्य जो भी स्प्रे होता है जिनसे इन परजीवी को हटाया जा सके, उनका स्प्रे करवा देना है,
1: जी
0: छिड़काव करा देना है, ताकि हम बरसात में मेन कीड़ा मकोड़ा परजीवी जो ये सब थे, इनके कारण ही पशु बीमार होते हैं और इनकी उत्पादन क्षमता में गिरावट पाया जाता है, तो
1: जी
0: इनसे ही हमें मुख्यतः बचाने का इंतजाम करना है।
1: जी तो हमारे श्रोता मित्र जो इस समय सुन रहे हैं, आप भी अवश्य ध्यान दें, और आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप संबंधित अपने निकटतम जो पशु चिकित्सक हैं उनके संपर्क में या उनसे उनके संपर्क में जाकर उनसे सुझाव लेकर आप आगे के कार्य को कर सकते हैं। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी बीमारियों के संबंध में, टीकाकरण के संबंध में, आवास के संबंध में, खान पान के संबंध में आपने जानकारी साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। सर अंत में आप हमारे ग्रामीण भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के संबंध में सर?
0: सभी ग्रामीण पशुपालकों से यही मेरी अपील रहेगी कि पशुओं में अभी चरने के लिए कम से कम छोड़े, ताकि बाहर जाके ना पशु भीगे ना परजीवी वाले घास ज्यादा खाए, घर में ही थोड़ा बांध के रखे, उनका थोड़ा ख्याल रखे, और जब मौसम सही हो तो उनको बाहर जाने के लिए छोड़े। समय पे कृमि का दवाई दे दें, टीकाकरण तो अब संभव नहीं है, लेकिन अगर जहाँ प्रकोप हो चुका है बीमारी का वहाँ रिंग वैक्सीनेशन करा ले अपने, जितने जागरूक रहेंगे वो उतना अच्छा रहेगा।
1: जी
0: इसीलिए
1: सर आपने दुधारू पशुओं की देखभाल बरसात के मौसम में इस संबंध में इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हमें पूरा विश्वास है कि आपने जो बातें हमारे ग्रामीण भाई बहनों को बताया है उस पर हमारे ग्रामीण भाई बहन अवश्य अमल करेंगे, और आपकी बातों को मानते हुए किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि एक दुधारू मवेशियों में किसी तरह की परेशानी होती है और किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है तो वो सीधा सीधी आय पर उनका असर देखने को मिलता है। हमारे श्रोताओं के, हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बहन हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था बरसात के मौसम में पशुओं का प्रबंधन। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कुंदन कुमार।

श्रोता मित्रों, और अब बात मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के संबंध में। जी हाँ, भारत सरकार की यह एक कृषि कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक मशीनों द्वारा खेती करने में मदद करना है, ताकि खेती का काम आसानी से हो सके और उनकी उपज बढ़ सके। सरकार खेती के लिए जरूरी उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर और थ्रेशर की खरीद पर 50% से लेकर 80% तक की भारी सब्सिडी देती है। जिन किसान भाई बहनों के पास खुद के पैसे नहीं हैं, वे कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए बहुत सस्ते किराए पर आधुनिक मशीनें ले सकते हैं। नई तकनीक के प्रसार की बात करें तो सरकार आधुनिक मशीनों का उपयोग करने के लिए भी किसानों को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग देती है। ग्रामीण भाई बहनों, इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट एग्री मशीनरी पर जाकर खुद को पंजीकृत करना होता है। आवेदन के आधार लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खेत के दस्तावेजों की जरूरत होती है। इस योजना के लाभ के संबंध में बात करें तो CSC के जरिए छोटे किसान भी कम किराए पर आधुनिक मशीनें ले सकते हैं। महिला किसानों, SC ST और छोटे किसानों को सब्सिडी में विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाती है। मशीनों के उपयोग से खेती के काम तेजी से होते हैं, जिससे मजदूरों पर निर्भरता घटती है। आधुनिक तकनीकों से बुआई और कटाई ठीक से होती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, और अब बात धान की फसल में लगने वाले कीट एवं प्रबंधन के संबंध में। जी हां, धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेटक और माहू जैसे कीट मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बचाव के लिए खेत में गहरी जुताई करने की जरूरत है, संतुलित मात्रा में खाद डालें तथा प्रकोप दिखने पर इमामेक्टिन बेंजोएट या काटार हाइड्रोक्लोराइड का उचित मात्रा में छिड़काव करें। बात अगर हम तना छेदक की करें, या कीट धान का सबसे खतरनाक दुश्मन है श्रोता मित्रों। इसकी सुंडी यानी लार्वा तने को अंदर से खा जाती है, पौधे के बीज की पत्तियां सूख जाती है जिसे डेड हार्ट कहते हैं, बालियां सफेद और दाना रहित हो जाती है। इसके लिए खेत के पास रोशनी लगाकर वयस्क पतंगों को नष्ट करें, यूरिया के अंतिम प्रयोग के समय काटार का उपयोग करें और इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। पत्ता लपेटक कीट की अगर हम बात करें, ये कीट पत्तियों को मोड़कर अंदर से हरा भाग खा जाते हैं। लक्षण अगर हम बात करें तो पत्तियां सफेद और पारदर्शी धारियों वाली दिखती है। इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो नाइट्रोजन यानी यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्लोरोपाइरीफास या काटार हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव अवश्य करें। भूरा फुदका या माहू कीट, जी हाँ, या धान के तने पर नीचे की तरफ झुंड में रहकर पौधे का रस चूसते हैं, पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं और खेत में गोल घेरे में फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। अगर प्रबंधन की बात करें श्रोता मित्रों, तो दवा का छिड़काव करते समय नोजल को पौधे के निचले हिस्से की तरफ रखें, पाइमेट्रोजन या डाइनोफ्लुरन का छिड़काव अवश्य करें। गंधी बग या कीट धान की दूधिया अवस्था, जब दाने भर रहे होते हैं उस समय इस कीट का हमला होता है। लक्षण यह है कि इसके कीट दानों के रस चूस लेते हैं, जिससे दाने खाली और काले भूरे रंग के हो जाते हैं। प्रबंधन की बात करें तो सुबह और शाम के समय खेत के आसपास नीम के तेल या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव अवश्य करें। एकीकृत कीट प्रबंधन की अगर हम बात करें, तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर कीट प्रतिरोधी धान के बीज अवश्य बोएं। सप्ताह में एक बार खेत में जाकर पत्तियों और तनों की जांच कर ले। जैविक खेती के लिए नीम के अर्क या जीवामृत का उपयोग अवश्य करें। तो श्रोता मित्रों, आपने जाना धान की फसल में लगने वाले कीट एवं प्रबंधन के संबंध में।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, और एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी सुझाव पर। लेकिन हम आपको बता दें, कल यानी दिनांक 14 जुलाई दिन मंगलवार के तापमान की अगर बात करें तो वर्षा 8.2 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 83% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 57% रहने की संभावना है। हवा की दिशा होगी उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर तथा रफ्तार रहेगी 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे। श्रोता मित्रों, खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य कर ले। इससे खरपतवारों द्वारा फसलों को कम हानि होती है तथा जल की बचत होती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई है तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा नीलहरित 1 पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहाँ पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा हो तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट के साथ 0.25% चूने के घोल का छिड़काव अवश्य करें। इस मौसम में किसान भाई बहनों, मक्का फसल की बुआई करें, लेकिन याद रखें बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई बहनों, आप पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। यह समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बहनों, पौधशाला में कीट

रोधी नाइलोन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। कद्दूवर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, सीताफल की पूसा विश्वास, पूसा विकास, तुरई की पूसा चिकनी धारीदार नसदार तथा खीरा की पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को खड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर करें।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: और अब श्रोता मित्रों कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कलाकार आर बजराय और साथियों की आवाज में मुंडारी लोकगीत।

0: हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति प्रवीण को, जोहार।
1: दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताज़ा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निवारण पर संतोष जताया।
7: झारखंड में करीब करीब 90% से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। जो हमारा कम्प्लेन था, BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि BLO को घर घर जाकर के सत्यापन करना है, न के बूथ पर बैठ करके।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 BLO की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फॉर्म जमा करने के लिए कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
8: कोई भी कैंप करवाने के लिए बात करके उसी तरफ से कराया जा रहा है, उसमें कैंप केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, कोई वार्ड पार्षद है, उसी तरफ से कोई वार्ड व्यक्ति कैंप नहीं कर सकते। केवल पॉलिटिकल पार्टी है, अपने वोटर की तरफ से BLA2 के माध्यम से करा सकते, वहां पर भी वोटर से कोई भी फॉर्म भरवाने के नाम में पैसा खर्च नहीं लेना है।
6: छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण

0: अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में उन्होंने दाखिल खारिज मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
1: लक्ष्य के अनुरूप जिला चल रहा है और जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटलाइजेशन होने का तो संतोषप्रद है। शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ MOU हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा MOU कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के MOU पर कड़ी आपत्ति जताई।
2: किनारे में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है, जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। मैं दूसरे कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
0: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित JPSC कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
3: पंचायती राज की प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें GPDP और जो विलेज BPRP को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गाँव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है और यह सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है।

0: रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मोरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, इसके तहत जो मेन ध्येय होता है कि हम लोग वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाए और अस्पताल में ला करके उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सके, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सके। आज हम लोग एक भोजन भी देते हैं, वो एक टोकन होता है। एक्चुअली वो टोकन इसलिए होता है कि हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि यू फर्स्ट, पहले आप खाइए तब अपने घर के और लोगों को खिलाइए, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आपको ज्यादा जरूरत है भोजन की।
1: गुमला वन प्रमंडल इस मानसून में RDF तथा सिविल कल्चर स्कीम के तहत गुमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 200 हेक्टेयर वन भूमि में 2,00,000 से अधिक पौधे लगाएगी। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि
3: 2-3 बारिश और जैसे हो जाएगी, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, तब प्लांटेशन में कार्य कराया जाएगा। RDF जो स्कीम हमारा है और सिल्वीकल्चर जो स्कीम है, उसके तहत जहाँ जहाँ प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी बैकग्राउंड वर्क वो किया जा चुका है। वी एक्सपेक्टिंग कि विदिन नेक्स्ट 15-20 डेज प्लांटेशन का कार्य जोर शोर से शुरू होगा। तो इस बार 2,00,000 से ज़्यादा पौधे डिफरेंट लोकेशन पे, करीब 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा इस मौसम अगले एक महीने के अंदर।
1: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन परियोजना के 1 वर्ष की प्रगति एवं आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि
4: ये एकजुट परियोजना जो 1 वर्ष पहले पिछले जुलाई से प्रारंभ की गई थी जिले में, और ये टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट जिले में संचालित की गई थी, और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 साल के बच्चों और माताओं के पोषण में कैसे सुधार हो, इसको लेकर ये एकजुट संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जीवन परियोजना के नाम से। और ये परियोजना 1 साल होने के बाद हमारे सभी ICDS सेंटर्स के सेविका इनके साथ मिलकर इन पर काम किए हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरंत इलाज करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम हमारे अपने।

0: उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। अंगों में थोड़ी शिथिलता आ जाती है, जिससे शरीर पहले की तरह क्रियाशील नहीं रह पाता। हमारी त्वचा भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं रहती। कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उम्र से संबंधित होती हैं, पर कुछ समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण त्वचा का ध्यान नहीं रख पाते और बढ़ती उम्र के कारण उनकी त्वचा खराब होने लगती है। उम्र को रोकना तो मुश्किल है, पर जहां तक त्वचा की उम्र की बात है तो इसे हम रोक नहीं सकते, पर हाँ सही देखभाल कर थोड़ा धीमा जरूर कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ त्वचा की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, समाधान किस हद तक संभव है और देखभाल कैसे की जाए, इन सब पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा में भी परिवर्तन आते हैं?
1: जी बिल्कुल, आपकी उम्र जिस तरह बढ़ती है उस तरह त्वचा में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप मेनली देखें तो स्किन में ऑयल की कमी होने लगती है। हमारे बॉडी में स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जिनसे ऑयल प्रोडक्शन होता है।
0: हाँ।
1: ये बढ़ती उम्र के साथ कम होने लगती है।
0: अच्छा।
1: उतना ही नहीं, स्किन ऑयल कम होने के साथ साथ आपकी स्किन पतली होने लगती है। इलास्टिन फाइबर कोलेजन होता है बॉडी में, वो कम होने लगता है। जिससे कारण जो फैट होता है लूज होने लगता है। तो ये सारे चेंजेस है जो स्किन में आती है।
0: अच्छा, तो बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है?
1: जी जैसा मैंने बताया, आप सबसे पहले आप देखें तो ऑयल की कमी होती है स्किन में।
0: बिल्कुल।
1: तो जिसके कारण इचिंग की प्रॉब्लम सबसे पहले बढ़ती है।
0: अच्छा।
1: और खास करके ये ठंड में तो और ड्राइनेस बढ़ने से होने लगता है, खुजली बढ़ती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जैसे फैट जो लूज होता है स्किन से, तो उसके चलते मसल्स वीक होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रिंकल्स आना।
0: हाँ।
1: चेहरे में शैगिंग जो बोलते हैं,
0: लटक जाना,
1: ये सारी चीजें होती है,
0: देखने को मिलती है।
1: तीसरा अगर हम लोग देखें जो स्किन जो पतली हो जाती है, तो उसके कारण बहुत जगह स्किन में ब्लीडिंग, स्किन के अंदर अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं स्किन में।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ब्लीडिंग की बात की तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कई बार होता है कि बुजुर्गों में देखने को आता है कि उनकी त्वचा में हल्की सी भी अगर चोट लग जाए या किसी वस्तु से थोड़ा सा दब जाए तो लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
1: इसको हम लोग मेडिकल वर्ड में सेनाइल पर्प्यूरा बोलते हैं। ये होता क्या है, बेसिकली स्किन तो
0: पतली हो जाती है जी,
1: साथ साथ आपका वेसल्स भी जो है वो डायलेट होने लगता है। तो अगर जोर से भी किसी बुजुर्ग को पकड़ लिए या जोर से अगर दब गई, गलती से भी जोर से दब गई, तो उसमें क्या होता है ना, अंदर अंदर स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है।
0: अच्छा।
1: जिसके कारण वो लाल धब्बा होता है।
0: हाँ।
1: फिर धीरे धीरे काला होता है, वो खुद ब खुद
0: थोड़े दिनों के बाद वो चला जाता है।
1: वो जैसे ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होती है, सेम वही प्रोसेस होता है स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है।
0: तो यानी घबराने वाली बात नहीं है, कई बुजुर्ग इससे घबरा
1: जाते हैं
0: कि कहीं आते
1: हैं हमारे पास भी आते हैं इस प्रॉब्लम,
0: कोई बीमारी तो नहीं हो गई,
1: बीमारी नहीं हुई, तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है कि कुछ नहीं है, बस ब्लीडिंग हो गई,
0: सिर्फ ये त्वचा की समस्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उम्र उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की त्वचा की उम्र दिख रही होती है,
1: जी,
0: तो
1: जी, जी।
0: ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके?

0: देखिए, इसमें बहुत सारा कारण है। सबसे मेजर तो आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं,
1: जी
0: खान पान में चेंजेस हो गए
1: हाँ
0: हैं, टाइमिंग जो आप सबका खराब हो गया, जैसे
1: जी
0: आजकल
1: देर
0: युवा
1: से
0: जो है
1: सोना
0: देर
1: देर
0: से
1: से
0: सोना
1: उठना
0: देर से
1: जी
0: उठना,
1: जी
0: खान पान मतलब हरी सब्जी फल फूल तो भूल जाइए, ठीक से जो खाना है वो रोटी सब्जी भी नहीं होता, आधे टाइम लोग बाहर ही खाते हैं।
1: जी
0: और इसके साथ साथ जो वर्कअप मतलब जो थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए,
1: हाँ
0: योगा
1: हाँ
0: होना चाहिए डेली रूटीन में आपके, वो
1: हाँ हाँ
0: सारे चीज नहीं हो पाते,
1: अच्छा
0: जिसके कारण ये सब बहुत कॉमन अब दिखने लगा है। आजकल
1: हाँ
0: तीस
1: हाँ
0: पैंतीस के बाद ही
1: हाँ
0: उम्र
1: हाँ
0: में झुर्रियां पड़ना,
1: जी
0: आपको मस से निकल जाना, स्किन
1: जी
0: टैक्स जिसको हम
1: जी
0: लोग बोलते
1: बिल्कुल हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: उसी तरह और भी सारे जो लेट उम्र में होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल डेवलप
1: हाँ
0: करने
1: हाँ
0: से आंख के ऊपर जिंथेलाज्मा आना,
1: हाँ हाँ
0: तो ये सारी चीजें आजकल यंग में भी 30-35 में भी देखने को मिल रही
1: मिल
0: हैं।
1: रही है,
0: तो ये
1: लोग इस पर
0: लाइफस्टाइल
1: ध्यान नहीं
0: चेंजेस
1: देते
0: नहीं
1: हैं
0: ध्यान देते
1: अपनी
0: हैं।
1: जीवन शैली पे।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ा है आपके स्किन में तेल नहीं बन रहा,
1: जी
0: आपको ऊपर से जितना आप तेल देंगे वो सबसे अच्छा है,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं। आप नारियल तेल, कोई भी बुजुर्ग है या
1: हाँ
0: जिनको भी इस
1: हाँ
0: तरह की प्रॉब्लम हो
1: हाँ
0: रही है,
1: हाँ
0: दिन भर में आप 3-4 बार ऊपर से नारियल तेल लगाइए,
1: अच्छा
0: उनको उतना आराम मिलेगा,
1: जी अच्छा
0: मुलायम चमड़ा
1: हाँ
0: रहेगा, तो
1: हाँ
0: इससे उनको भी काफी राहत होगी।
1: राहत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जीवन शैली जो है वो भी काफी महत्व रखती है त्वचा की उम्र को प्रभावित करने के
0: वो
1: लिए।
0: सबसे ज्यादा महत्व रखती है,
1: अच्छा
0: मैंने जैसे बताया लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आजकल आप देखो नींद, हम लोग बोलते हैं मिनिमम 6-7 घंटे, 7 घंटे तो कम से कम होने चाहिए, आजकल किसी की नींद पूरी नहीं होती है,
1: जी बिल्कुल
0: और
1: जी
0: स्ट्रेस बढ़ गया है
1: बिल्कुल
0: जिंदगी में।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तनाव जो है ये बुजुर्गों में भी बहुत देखने को मिल रहा है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: कहीं
0: जी
1: ये भी तो नहीं उनके त्वचा पर प्रभाव डाल रही है
0: जरूर जरूर, तनाव स्ट्रेस तो सारे मतलब सारे बीमारी
1: की
0: का
1: जड़
0: जड़ है,
1: है।
0: अगर
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेस जीवन से हट जाए तो आपका आधा जीवन तो ऐसे ही स्वस्थ हो गया,
1: स्वस्थ हो जाएगा
0: आप इसी
1: बिल्कुल
0: तरह स्वस्थ रहेंगे, केवल स्किन ही नहीं आपका ऐसे भी हेल्थ पूरा अच्छा रहेगा,
1: जी,
0: तो
1: मतलब
0: वो
1: शरीर
0: सबसे
1: के
0: बड़ा
1: सभी
0: कारण
1: अंग को प्रभावित करता
0: प्रभावित
1: है
0: करता है
1: स्ट्रेस।
0: सारा
1: अच्छा
0: सारे अंगों को, सारी बीमारियों को,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: भी आप सिंपल्स अगर बाल झड़ना भी है
1: हाँ
0: वो
1: तो वो
0: स्ट्रेस से
1: भी स्ट्रेस
0: बढ़ता
1: से
0: है,
1: हाँ हाँ
0: स्किन में झुर्रियां पड़ रही है,
1: हाँ
0: स्किन में
1: हाँ
0: अर्ली चेंजेस आ रहे हैं, शुगर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे स्ट्रेस पे सारे
1: तो एक तरह
0: डिपेंडेंट
1: से
0: है।
1: सभी रोगों की एक दवा है कि तनाव
0: स्ट्रेस
1: से दूर
0: फ्री,
1: रहे
0: अगर आदमी स्ट्रेस फ्री
1: जी
0: रहे तो आप देखिए जो आदमी सही में स्ट्रेस
1: हाँ
0: फ्री है,
1: हाँ
0: जिनको किसी भी अपने तरह
1: का
0: से
1: तनाव नहीं
0: तनाव
1: है
0: नहीं
1: हाँ
0: है तो
1: हाँ
0: वो बहुत खुशहाल है,
1: खुशहाल है जी
0: वो हेल्थ
1: बिल्कुल
0: वाइज बहुत खुशहाल है, हो
1: हाँ
0: सकता है
1: हाँ
0: पैसे उतने नहीं हो उसके
1: नहीं
0: पास
1: हो जी
0: लेकिन हेल्थ
1: हाँ
0: वाइज वो बहुत खुशहाल है
1: अच्छा, ये जरूरी है बुजुर्गों के लिए कि वो तनाव
0: एकदम।
1: से कम दूर रहे।
0: चेंजेस
1: खान
0: होता है,
1: पान भी असर करता है त्वचा
0: देखिए
1: के
0: खान
1: ऊपर।
0: पान आप आज बच्चे से देखिए ना, जो शुरू में पहले हम लोग खाते थे हेल्दी खाना,
1: जी
0: जो बच्चे हरी सब्जियां फल और खाना शुरू करते थे, आजकल चाउमीन मैगी
1: ज्यादा
0: पिज्जा
1: खाते
0: बर्गर
1: हैं
0: पे आ गए हैं,
1: जी जी
0: तो ये सारा तो शुरू से ही
1: पर
0: लाइफस्टाइल
1: डॉक्टर
0: चेंज
1: साहब,
0: कर रहा
1: जैसा
0: है।
1: कि हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों में खाना पचने की जो क्षमता है वो थोड़ी
0: जी
1: सी
0: जी
1: कम हो जाती है, और इस वजह से
0: जी
1: उनका खान पान भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है।
0: जी जी
1: तो हम जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों को खान पान कैसा रखना चाहिए ताकि वो अपनी त्वचा को कुछ हद तक ढलने से बचा सके।
0: नहीं देखिए बुजुर्ग में ही नहीं, अगर आप यंग हैं, आप अपनी
1: हाँ
0: अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, फूड हैबिट्स में चेंज लाते
1: हाँ
0: हैं, तो आप अपनी उम्र को बहुत हद तक छुपा सकते हैं, कम कर
1: कम
0: सकते
1: कर
0: हैं,
1: सकते जी
0: जो चेंजेस आपके 50 के बाद आने के वो हो सकते हैं 60 के बाद आए,
1: जी
0: आजकल तो 40 के बाद हम लोग
1: तो
0: बोलने
1: किस
0: लगते हैं
1: तरह का
0: 35।
1: खान पान आप कहना
0: हेल्दी
1: चाहेंगे?
0: फूड्स, हेल्दी फूड आप
1: अच्छा
0: हरी सब्जी अपने डाइट में इंक्लूड करिए,
1: अच्छा
0: फल जो होते
1: फल
0: हैं फ्रेश फ्रूट्स
1: अच्छा
0: होते हैं
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: डेली फूड्स में आप लाइए, फल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप एप्पल ही ऐड करिए, आप डेली एक ऑरेंज ले सकते हैं, ऑरेंज में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है, ये सारा स्किन के
1: अच्छा
0: लिए बॉडी के लिए अच्छा रहता है।
1: हाँ हाँ
0: हरी सब्जियां, सीजनल हरी सब्जियां, जैसे
1: अच्छा
0: अभी ठंड में
1: हाँ हाँ
0: आप मटर हो गया, गोभी हो गई,
1: अच्छा
0: इवन बीन्स हो गए,
1: जी
0: ये
1: जी
0: सारे जो है आपके हेल्थ के लिए
1: यानी
0: बहुत
1: आपके
0: अच्छा है।
1: कहने का मतलब है कि जो मौसमी फल होते हैं और मौसमी
0: मौसमी
1: सब्जियां,
0: सब्जियां होती हैं
1: ये जरूर
0: ये
1: खाएं,
0: जरूर खाए, आप जो
1: बुजुर्ग
0: भी
1: हो चाहे युवा हो
0: युवा हो
1: जी।
0: ये जरूर खाए,
1: अच्छा
0: ऑयली चीज का सेवन कम से कम,
1: अच्छा
0: जितना
1: तली
0: हो
1: भुनी
0: सके
1: चीजें
0: कम
1: कम खाएं
0: खाए। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज पे जोर देना पड़ूंगा, पानी के ऊपर, पानी हमारे जल जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आप अगर हमसे पूछे तो

0: पड़ता है। तो आप पानी जितना पियो, हाइड्रेशन रहेगा तो स्किन भी आपका अच्छा रहेगा और बॉडी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं रहेंगे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा में आ रहे बदलाव को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: तो क्या नींद का भी कोई स्थान है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी नींद में भी कमी आ जाती है, बुजुर्ग जो हैं बहुत कम देर सोते हैं।
0: देखिए, वो तो थोड़ा बुजुर्ग के साथ प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम बचाना चाहते हैं तो शुरू से मैंने बोला ना,
1: हाँ
0: एक्सरसाइज
1: अच्छा
0: बहुत ज़रूरी है। अगर आप
1: हाँ
0: डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे खुद ब खुद नींद आपकी बढ़ रही है।
1: अच्छा,
0: जितना
1: यानी शरीर
0: मोबाइल से
1: थकेगा
0: थकेगा तो
1: तो नींद
0: वो
1: अच्छी
0: नींद अच्छी
1: आएगी।
0: आएगी,
1: अच्छा
0: और जितना स्क्रीन से मोबाइल से आप दूर रहो। और जैसे आपने पूछा कि कैसे हम लोग इसको डिले कर सकते हैं,
1: जी,
0: आपको एक
1: अच्छा
0: प्रॉपर रूटीन केयर करना है। एक
1: अच्छा
0: सिंपल क्लींजर रखना है,
1: हाँ हाँ
0: एक मॉइस्चराइजर,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: सनस्क्रीन। इसके
1: अच्छा
0: अलावा 10 कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आप
1: हाँ
0: अगर मेकअप भी करते हैं तो कोशिश करिए घर आने के बाद वो धो के एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर आप लगा लें
1: अच्छा
0: उनको।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं चेहरा मन का आईना होता है, साथ ही साथ चेहरे पर आई झुर्रियां उम्र का आईना होती हैं। पर जरूरी नहीं होता कि झुर्रियां उम्र से ही आई हों, कई बार सही देखभाल ना होने की वजह से भी उम्र से पहले ही चेहरे पर दिखाई पड़ने लगती हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता में भी कमी आ जाती है।
0: जी,
1: तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, अगर हम, मैंने तो जैसे बताया बचाव आप पहले करिए, लेकिन आप किसी कारण बचाव नहीं कर पाए और
1: हाँ
0: ये सारी चीजें, झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं, रिंकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, शैगिंग शुरू हो गया है, तो इसके लिए आप किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर शुरू में ही कंसल्ट करें।
1: अच्छा
0: मेडिकेटेड क्रीम्स जो हम
1: अच्छा
0: लोग प्रेस्क्राइब करते हैं एज ए स्किन
1: अच्छा
0: स्पेशलिस्ट, तो वो सारे स्किन क्रीम्स बहुत अच्छी हैं जो कि आपके अर्ली चेंजेस अगर आ भी गए हैं तो उनको रिवर्ट बैक कर सकते हैं।
1: अच्छा यानी आपके कहने का मतलब, जो बाजार में जो उपलब्ध क्रीम है वो आप ना इस्तेमाल कर, जो मेडिकेटेड क्रीम है
0: जी
1: वो
0: जी
1: इस्तेमाल करें।
0: जी
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: मेडिकेटेड चीज अगर यूज करेंगे तो वो रिवर्ट बैक हो सकता है।
1: जी
0: तो आजकल बहुत सारे प्रोसीडियर्स आ गए
1: हाँ
0: हैं, जैसे
1: हाँ
0: सिंपल स्किन टाइटनिंग करते हैं
1: हाँ
0: हम
1: हाँ
0: लोग,
1: हाँ हाँ
0: हाइड्रा फेशियल करते हैं, अगर उससे ऊपर जाए तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते
1: जी
0: हैं, फिलर्स
1: जी
0: करते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: स्किन फिलर्स
1: हाँ
0: आते हैं।
1: हाँ
0: तो ये सारे अगर आपके एज से पहले झुर्रियां आ गई है या सैगिंग हो गया है तो उनको हम लोग रिवर्ट बैक बहुत अच्छे
1: कर
0: तरीके से
1: सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: अच्छा, और जैसा आपने बताया कि खान पान और जीवन शैली को
0: जी,
1: सुधार
0: वो तो
1: कर भी
0: सबसे पहले है, वो
1: इस
0: तो सबसे
1: प्रक्रिया को
0: पहले।
1: धीमा किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आज जितनी जानकारी आपने दी और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, जो कि बुजुर्ग क्या, अगर युवा भी है वो भी अगर अपने जीवन में उसकी शुरुआत कर दें तो अपनी त्वचा को काफी हद तक अच्छा रख सकते हैं
0: जी, जरूर
1: और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ
0: जी,
1: आए और आपने इतनी अच्छी और जानकारी की बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे अपने का ये अंक आज यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से।

100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत। गीत लिखा था A.M. तुराज ने, धुन बनाई थी संजय लीला भंसाली ने। तमाशा फिल्म का गीत लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल है इरशाद कामिल के, धुन बनाई है A.R. रहमान ने।

वजीर फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने, संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं।

आवाजें थीं पापॉन और रोंगिनी गुप्ता की। गीतकार थे वरुण ग्रोवर, संगीतकार अनु मलिक। फिल्म सुई धागा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह की आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं रश्मि विराग का लिखा गीत। संगीत अमाल मलिक का है। फिल्म है हीरोपंती।

अरमान मलिक की आवाज में लीजिए सुनिए कुणाल वर्मा का लिखा, अमाल मलिक का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म है दे दे प्यार दे

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडीज का गीत। गीतकार हैं प्रशांत पांडे, संगीतकार राम संपत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी

0: डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अम्बरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing

0: ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या

0: श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर? तो
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से, जैसे मैंने पहले बताया, नीचे ले जाएं। लूज सैंड, ऑफ कोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जैसे सरकार की तरफ से कुछ, जैसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
1: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक

0: अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूं, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: जी,
0: तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बानस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और
0: सही
1: है, भी प्रेरणा,
0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है, और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये सिर्फ

0: नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
1: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
0: जी।
1: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। लॉन्ग आंसर, मैंने आपको बताया।
0: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार रमाकांत जी।
1: नमस्कार
2: रमाकांत
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
0: भविष्य के लिए निवेश है,
1: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
0: बच्चे डालते हैं,
1: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है,
0: हर बूंद कीमती है।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 2331048127171 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
1: मैडम, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना

0: एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूंगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए, ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो स्तर
0: ऊपर हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है जी, ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग इससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताई कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवी केज हैं
1: जी।
0: उसी तरह जल

0: हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है। ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली। एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार आकाशवाणी को।

FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत बेवफा। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज गुलाम अली की है, बोल हैं समीर के, धुन बनाई है।

बेवफा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में। अगले गीत के बोल लिखे हैं निरंजन अय्यंगर ने, संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का है। रेखा भारद्वाज की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म डी डे का गीत।

गीतकार सईद कादरी, संगीतकार प्रीतम, रेखा भारद्वाज की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म बर्फी का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने। अरिजीत सिंह गायक कलाकार हैं और फिल्म है रंगून।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे रंगून फिल्म का गीत, जिसे लिखा था गुलजार ने, धुन बनाई थी विशाल भारद्वाज ने। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं वायलिन वादन। कलाकार हैं पंडित वीजी जोग। राग है किरवाणी।

0: राग किरवानी में अभी आप सुन रहे थे। वायलिन वादन कलाकार थे पंडित वीजी जोग। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़

0: डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal, South 24 Parganas district. In social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Makali trawler. After 5th July, connection has been lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident in Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where the projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and 4-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with the laying of foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one of women's test against host England at the Lords. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lords. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. And that is the end of this news bulletin.
3: FMK 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।